0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है.
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपनी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड के साथ इंसान रमी खेल सकता है, मोनोपोली खेल सकता है, बट आपने तो उसे नेक्स्ट लेवल कर दिया. यू एंडेड अप प्लेइंग बेडरूम गेम्स विद योर मम्मीज बेस्ट फ्रेंड. हाउ
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बट द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल इज कि अगर आपके पास ऐसी कोई कन्फेशन है मेरी जान, तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, प्यार से लोग मुझे अपनी ब्रोशी भी कहते हैं, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर. फिर मैंने आपका कन्फेशन पढ़ा एंड देन आई फेल्ट इवन बेटर, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बड़े गंदे गंदे ओछे ओछे काम किए और मुझे ऐसे लग रहा था कि एम आई दी ओनली स्कम ऑफ दिस अर्थ. फिर मैंने आपसे बात की, मुझे लगा कि नहीं, कम से कम एक और ऐसा गंदा इंसान तो है जिंदगी में.
3: गंदा गंदा, ओके हाँ, बट ठीक है, जब इंसान की मजबूरी होती है वो तभी गंदे काम करता है.
1: ओहो, तो ऐसा क्या हुआ आपके जीवन की मजबूरी में कि आप गंदा काम करने पर मजबूर हो गए?
3: ओके, ऑनेस्ट कन्फेशन, ऑनेस्ट कन्फेशन.
1: बाकी सब झूठ बोलते हैं. अच्छा, नहीं नहीं, कैरी ऑन
3: भाई. हुआ क्या कि एक साल पहले एक बंदी से मिला भाई, और काफी अच्छे भाई, आंख से आंख मिली, काफी अच्छा प्यार शायर सब हो रहा है, ठीक है, बट टाइम के साथ साथ यू नो एक स्पार्क वो दूर हो जाता है. तो पहली उसने बोला था कि आई यूज्ड टू स्मोक वेरी बार, ठीक है, तो अभी उसने मेरे को बोला कि अगर तूने अगली बार सिगरेट पी तो हम लोग ब्रेकअप कर लेंगे. तो वो एक जो होता है ना, तो वो
1: हाँ कि हम लड़के को सुधारेंगे, हर लड़की चाहती है कि लड़के को सुधार दे उसे बस. हाँ करेक्ट,
3: सुधार दिया, नहीं दिया, लेकिन अब वो स्पार्क खत्म हो गया. राइट, तो अब नहीं चाहिए भाई, कोई नहीं, बहुत है, आगे आप बढ़ो यार जिंदगी में, मूव ऑन, ठीक है, ठीक है, बट स्टिल अब क्या करना है ना, कि अब मेरे को नहीं चाहिए था, तो आई जस्ट स्टार्टेड स्मोकिंग अगेन जस्ट टू शो हर. और पता क्या, मेरे को पता था कि वहां से इतने बजे आएगी, वहां से ये होगा, और तभी वहां जाके खड़ा हो जाता है, स्टार्ट स्मोक
1: जस्ट सो दैट शी ब्रेक्स अप विद यू.
3: हां,
1: तो ये ब्रेकअप हो गया है कि?
3: अरे कहां, अब फिर कलेश भाई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बट ठीक है, हम भी भाई कोई नहीं, हम भी थोड़े जिद्दी हैं, करके मानेंगे.
1: ओह गॉड, दिस इज अ रियली नाइस कन्फेशन. मतलब ना, रात के इस टाइम पर जब इंसान को थकान हो रही होती है एंड यू नीड सम रिफ्रेशमेंट, आपकी कन्फेशन सुन के मैं बहुत रिफ्रेश फील कर रही हूँ. बिफोर आई रोशिफाई यू, जब आप सिंगल हो जाओगे

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba ki
2: Calm down, my bhagjano. आपने जब अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई की थी तब मुझसे पूछ के नहीं की थी, उसे झूठ बोला था, मुझसे पूछ कर नहीं बोला था, लेकिन अब जब आपके साथ वो कॉन्फ्रंटेशन करने वाली है एंड शी वॉन्ट्स यू टू शो अप इन पर्सन, माई ओनली सजेशन टू यू इज ब्लू कलर के कपड़े पहन कर जाना। जब भी किसी झगड़े में सामने वाले इंसान ने नीले रंग के कपड़े पहने होते हैं, दे एक्चुअली टेंड टू काम द एंटायर सीन डाउन। अर्थात जहां आपकी गर्लफ्रेंड 100% लाल पीला हो रही है, प्लीज पार्डन माई कलर पन, वही वो आपके ब्लू कपड़ों के आसपास आते ही कम से कम 40 डिग्री ठंडी हो जाएगी एंड शी विल बी लेस मैड एट यू। यू आर ऑलरेडी वेलकम फॉर दिस टिप। अगर आपको ऐसे ही पर्सनलाइज टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB, एंड व्हाइल यू डू दैट नॉरी बॉय कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: Toshi Baba ki jai.
1: Calm down, my bhagjano. Today I have the perfect thing for you. Agar aap date karna chahte ho is chip chipe humid weather mein, all you have to do for yourself to make sure ki jab aap apni date par ja rahe ho, you don't end up looking like aapne sirf apne chehre par 1 kilo pasina lagaya hai, is to make your own face mist. Iske liye aapko ek bottle chahiye jisme ek misting ability ho, spray type of whatever mechanism, aur aapko chahiye 1 liter pani. उसमें आपको डालना है 2 tablespoons रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, एंड यू नीड आधा टीस्पून ग्लिसरीन. इसे शेकअप करो, स्टर करो, एंड टर्न दिस इनटू योर ओन होममेड फेशियल मिस्ट. सो डेट पर जाने से पहले, मुंह पर सनस्क्रीन और क्रीम लगाने से पहले, चिपचिपे बारिश के मौसम से निकलने के बाद, जब आपका मन करे, टेक दिस बॉटल आउट ऑफ योर बैग एंड देन स्प्रे योर फेस विद इट एंड यू विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स. आपकी स्किन इतनी ड्यूई और फ्रेश लगेगी. आई ट्राइड ऑल द टाइम थैंक्स टू माय नानी, मैं बचपन से बना रही हूँ, एंड इट इज एब्सोल्यूटली फूल प्रूफ व्हेन इट कम्स टू मेकिंग योर स्किन लुक रियली डिलिशियस लाइक अ स्ट्रॉबेरी. और अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड आई विल टेल यू सम पर्सनली. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: चलो पहली डेट तो कॉफी पर हो गई, सब करते हैं। दूसरी डेट को थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं। लेट्स ट्राई एंड डू अ 5 किलोमीटर रन टुगेदर। और मेरी बेस्टी मुझे कह रही है फोन पर, एंड शी वाज लाइक 5 किलोमीटर का रन अपनी दूसरी डेट पर, मेरा फाउंडेशन, मेरा मेकअप सब पिघल जाएगा। ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू डू इट एट 5 इन द मॉर्निंग। 5 इन द मॉर्निंग टेक्निकली नहीं, हम मिडनाइट नहीं है। एंड आई वाज लाइक, हाँ बेब, सोच इसके बारे में, तू सुबह 4:30 बजे उठेगी ताकि तू 5 बजे इस बंदे के साथ भाग रही होगी, विच इज नॉट द मोस्ट रोमांटिक थिंग फॉर अ सेकंड डेट। ऑल्सो सोच, जब तेरा सारा मेकअप पिघल जाएगा, तेरा एक्ने और सारे ट्रबल्ड एरियाज विच यू वॉन्ट हिम टू फाइंड आउट इन द 6th or 7th date विल बिकम एब्सोल्यूटली क्लियर ऑन द सेकंड डेट। एंड शी वाज लाइक, वो सब छोड़ यार, इतना भागेगा कौन, आई डोंट लव हिम दैट मच। बिसाइड्स आई ऑलवेज टोल्ड हर, एक बंदे के पीछे या इस केस में उसके साथ भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो रनिंग 5 किलोमीटर ऑन द सेकंड डेट है, काफी ट्रैशी आइडिया लगता है मुझे तो। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अजीब और गरीब एडवेंचर्स किए हैं इन द नेम ऑफ लव एंड डेटिंग, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड टेल मी व्हाट्स द स्टूपिडेस्ट डेट यू हैव एवर गॉन ऑन। एंड ऑन दैट नोट, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रैंडो फॉर नो राइम और रीजन. मैंने आपसे इंस्टाग्राम पर पूछा था कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही फिल्मी लव स्टोरी हो गई, जिसे देखकर आप खुद ही सोचे हो कि यार ऐसा कैसे हो गया मेरी जीवन में. मेरी जीवन कैसी हिंदी है ये. मेरी नाम है मिर्ची रोशी. नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. अगर आपके पास कोई फिल्मी लव स्टोरी है, आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी अबाउट इट. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. यू नो द नेम, यू नो द नाम के स्पेलिंग ROCHIE. और ऑन दैट नोट मेरे साथ लाइन पर रॉनी है. हाय रॉनी. मॉर्निंग.
2: Hi.
1: How are you?
2: I'm very good. How are you?
1: Good. तो आप हो ना, लेकिन अब मुझे जो आपने संक्षिप्त में अपनी फिल्मी स्टोरी सुनाई है तो एग्जैक्टली हुआ क्या आपकी जिंदगी में?
2: जैसे सूरज उगता है ना,
1: हाँ.
2: और फिर सूरज उगता है, फिर शाम को अंधेरा हो जाता है, सूरज ढल जाता है.
1: हाँ.
2: हम बोलते हैं उसको सूरज को ढलना.
1: हाँ.
2: बट सूरज के आगे चांद उसको ढक देता है, इसलिए वो अंधेरा होता है.
1: करेक्ट.
2: अच्छा, जैसे चांद ढकता है तो चांद जैसी आता है तो चंद्र ग्रहण भी आता है. उसी ग्रहण से मिलता जुलता मेरा बेस्ट फ्रेंड था. आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आई एम श्योर ही विल बी एम्बैरेस्ड बिकॉज जो उसकी दुर्दशा, उस ग्रहण की दुर्दशा करी थी मैंने. आई वुड रियली नॉट बी एबल टू से. बट यस, आई वाज डेटिंग अ गर्ल. आई वाज क्वाइट इन अ वेरी हेल्दी रिलेशन फॉर गुड 5 years. वी हैड अ वेरी नाइस टाइम टुगेदर, द क्वालिटी टाइम, द इंटिमेसीज, यू नो एवरीथिंग. लाइक एक प्रॉपर रिलेशनशिप में होता है ना, घूम रहे हैं, पुलिस पकड़ रही, जंगल में जा रहे हैं, फिर भी पुलिस पकड़ के, फिर 1000 रुपए दे के छूट के आ रहे हैं, है ना. नो मैटर यू आर अ स्टड ऑफ द सिटी, बट स्टिल बंदी की इज्जत है. सो माई सो कॉल्ड एक्स वॉज फ्रॉम अ मल्टी मिलियनर फैमिली, और मैं बेचारा काइनेटिक में घूम रहा हूँ, यू नो, डूइंग एवरी ब्लडी शिट. वन फाइन डे आई कम बैक फ्रॉम द प्लेस आई वॉज कमिंग फ्रॉम एंड माई बेस्ट फ्रेंड यूज टू स्टे नेक्स्ट टू मी. तो उस टाइम ना व्हाट्सएप चला था नया नया, एंड दिस जेंटलमैन ऑफकोर्स हैड अ फोन शो ऑफ एंड दिस lady had a phone to show off. So WhatsApp में they started sharing emojis. तो जैसे वो पिक्चर थी ना, मैं, मेरी पत्नी और वो, उसमें मैं वो बन गया और मेरी पत्नी किसी और की हो गई. So this guy bloody started giving him टूटा कंधा to ensure that if he is not there, I am there. And this foolish girl couldn't understand that in spite spending 5 years with me, she's, you know, kind of, I mean, like, so she was sleeping around with him. With
1: oh,
2: him.
1: God.
2: So I knew how to enter, you know, his house. And the moment I just wanted to surprise him.
3: Mirchi. Fresh maal.
4: Imran Hashmi ke songs aur playlist hits. Dono ka rishta purana hai. Unki ugly musical offering hai, Ye Awarapan.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मैं पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को इन रियल लाइफ मिलने जा रहा हूँ. अब से पहले हमने सिर्फ इंस्टा पर चैटिंग की है और अब मैं बहुत नर्वस हूँ. क्या कपड़े पहन के जाने चाहिए इस डेट के लिए?
1: रोशी के डीएम से
0: सनुज का मुझे मैसेज आया ऑन इंस्टाग्राम. सनुज, आप ऑब्वियसली अपने सारे रिलेशनशिप्स इंस्टाग्राम पर कंडक्ट करते हो. आपको ये बंदी भी इंस्टा पर मिली, आपने एडवाइस भी मुझसे इंस्टा पर मांगी, बट आई एम नॉट गोना जज यू फॉर बीइंग सच अ मिलेनियल. अगर आप पहली बार एक डेट पर जा रहे हो और आप बहुत नर्वस हो, देन यूज द स्मार्टेस्ट बेट देयर एवर वॉज. एक रिसर्च के हिसाब से अगर बंदे ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट कलर की शर्ट पहनकर एक बंदी को मिलने जाए, द चांसेस ऑफ इम्प्रेसिंग द वुमन आर 70% हायर एज अपोज टू अगर आप किसी और कलर के कपड़े पहन कर जाते हो. ये इसलिए भी है बिकॉज ट्रेडिशनली व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स आर कंसिडर्ड अ वेरी क्लासिक वे ऑफ लुकिंग वेरी सेक्सी एंड अट्रैक्टिव. तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार शर्ट और ब्लू जीन्स आर कंसिडर्ड अ वेरी क्लासिक वे ऑफ लुकिंग वेरी सेक्सी एंड अट्रैक्टिव, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं कौन से कपड़े निकालूं, किस

पीठ सीधी है, शोल्डर्स आर पुश्ड बैक, दैट विल मेक यू लुक टॉलर एंड लीनर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आप ये बेसिक हाइजीन फॉलो कर दो, बाकी सब कुछ तो आपकी फोटो देख के मैं समझ ही गई थी कितने चार्मिंग हो आप. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई भाषण है एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू मी अबाउट इट, यू जस्ट वांट एन आंसर, हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू आर एव्स यू हैव टू डू नॉरी बॉय, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: चौपट बारिशों की वजह से एक स्टोरी याद आ गई. सो दिस हैपेंड काफी मतलब रिलेटिवली रिसेंटली टू मी. मैं और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, शायद हम एक दूसरे से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मोहब्बत करते थे, बट पता नहीं कभी रियलाइज नहीं किया कि कब दोस्ती से मोहब्बत हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे ही बारिशों के दिन थे और हम दोनों एक पार्क के बेंच में बैठे हुए थे और धीरे धीरे बारिश होने लग गई, सब पार्क से चले गए. वो भी मुझसे कहने लगा कि चल उठ के चलते हैं, भीग जाएंगे. सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, कार्डबोर्ड के थोड़ी बने हैं, भीग जाएंगे तो क्या होगा, पिघल जाएंगे. तो वो बैठ गया मेरे साथ. अब बारिश थोड़ी सी धीमी हुई टू दैट पॉइंट जहाँ वो अपनी सिगरेट जला सकता था. वो सिगरेट पी रहा था, मुझसे बातें कर रहा था जिंदगी के बारे में, अपनी मॉम के बारे में, और मैं उसे अपनी मॉम के बारे में बता रही थी. और फिर सडनली बातें हमारे बचपन की होने लगी और वो बातें करते करते उस गीले पार्क में उस भीगे बेंच के ऊपर बैठकर उसने अपनी सिगरेट बुझाई एंड वी किस्ड एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल. क्योंकि ना हमने सोचा था कि वो किस होगी, ना हमने सोचा था कि उस दिन बरसात होगी, ना हमने सोचा था कि वो पार्क बेंच हमारी मोहब्बत का स्टैंडिंग लेगेसी बन जाएगा. But I guess that's what बारिश does to you, ना? ना चाहते हुए भी मोहब्बत करा देती है. अगर आपके साथ भी ऐसी कोई बारिश वाली स्टोरी है, aren't you gonna share it with me? Morning Glory है. Hit me.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
3: मिर्ची, फ्रेश माल,
4: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपनी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड के साथ इंसान रमी खेल सकता है, मोनोपोली खेल सकता है, बट आपने तो उसे नेक्स्ट लेवल कर दिया. यू एंडेड अप प्लेइंग बेडरूम गेम्स विद योर मम्मीज बेस्ट फ्रेंड. हाउ
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बट द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल इज कि अगर आपके पास ऐसी कोई कन्फेशन है मेरी जान, तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, प्यार से लोग मुझे अपनी ब्रोशी भी कहते हैं, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बड़े गंदे गंदे ओछे ओछे काम किए, और मुझे ऐसे लग रहा था कि एम आई दी ओनली स्कम ऑफ दिस अर्थ. फिर मैंने आपसे बात की, मुझे लगा कि नहीं, कम से कम एक और ऐसा गंदा इंसान तो है जिंदगी में.
3: गंदा गंदा, ओके. हाँ बट ठीक है, जब इंसान की मजबूरी होती है वो तभी गंदे काम करता है.
1: ओहो, तो ऐसा क्या हुआ आपके जीवन की मजबूरी में कि आप गंदा काम करने पर मजबूर हो गए?
3: ओके, ऑनेस्ट कन्फेशन, ऑनेस्ट कन्फेशन.
1: बाकी सब झूठ बोलते हैं. अच्छा, नहीं नहीं, कैरी ऑन
3: भाई. हुआ क्या कि एक साल पहले एक बंदी से मिला भाई, और काफी अच्छे भाई, आंख से आंख मिली, काफी अच्छा प्यार शायर सब हो रहा है, ठीक है. बट टाइम के साथ साथ यू नो एक स्पार्क वो दूर हो जाता है. तो पहली उसने मुझसे बोला था कि आई यूज्ड टू स्मोक वेरी बार, ठीक है. तो अभी उसने मेरे को बोला कि अगर तूने अगली बार सिगरेट पी तो हम लोग ब्रेकअप कर लेंगे. तो वो एक जो होता है ना, तो वो
1: हाँ कि हम लड़के को सुधारेंगे, हर लड़की चाहती है कि लड़के को सुधार दे उसे बस. हाँ करेक्ट,
3: सुधार दिया, नहीं दिया, लेकिन अब वो स्पार्क खत्म हो गया. राइट, तो आप नहीं चाहिए भाई, कोई नहीं, बहुत है, आगे आप बढ़ो यार जिंदगी में, मूव ऑन, ठीक है. बट स्टिल अब क्या करना है ना, कि अब मेरे को नहीं चाहिए था, तो आई जस्ट स्टार्टेड स्मोकिंग गेम जस्ट टू शो हर. और पता क्या, मेरे को पता था कि वहां से इतने बजे आएगी, वहां से ये होगा, और तभी वहां जाए खड़ा हो जाता है, स्टार्ट स्मोक
1: जस्ट सो दैट शी ब्रेक्स अप विद यू.
3: हां,
1: तो ये ब्रेकअप हो गया है कि?
3: अरे कहां, अब फिर कलेश भाई. छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बट ठीक है, हम भी भाई कोई नहीं, हम भी थोड़े जिद्दी हैं, करके मानेंगे.
1: ओह गॉड, दिस इज अ रियली नाइस कन्फेशन. मतलब ना, रात के इस टाइम पर जब इंसान को थकान हो रही होती है एंड यू नीड सम रिफ्रेशमेंट, आपकी कन्फेशन सुन के मैं बहुत रिफ्रेश फील कर रही हूँ. बिफोर आई रोशिफाई यू, जब आप सिंगल हो जाओगे प्लीज गेट इन टच विद मी अगेन. ओके,
3: फॉर श्योर.
1: हां, दैट साउंड्स डिलाइटफुल. ये लो आपके लिए.
4: यू've been roshified.
1: साथ में एक दो फ्री किसेस दे दूं आपको? आई मीन यू साउंड क्यूट.
3: Oh, I would love to.
1: Okay, there you go. It was very, very nice talking to you, mystery caller.
3: Thank you so much.
1: अपने लंग्स का ख्याल रखना, और अगर आपको अपने दिल और लंग्स दोनों का ख्याल है फिर भी आप जिंदगी में गलती आफ्टर गलती कर रहे हो, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

अगर आप किसी चीज पर यकीन करते हो और अगर खुद पर भरोसा हो तो जिंदगी में कोई भी ऑब्स्टिकल आए ना, आप जिस चीज में विश्वास करते हो वो तो सच होके ही रहेगी। ये चीज मुझे मेरे बॉस ने कही थी इन अ कॉन्वर्सेशन जो हम जनरली कर रहे थे उनके काम के बारे में। एंड ही सेड जोशी कि जितना भी मेरा रेडियो का करियर है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पर लोगों ने मुझे पुल डाउन करने की कोशिश की, मेरे काम में ऑब्स्टिकल्स लाने की कोशिश की, बट क्योंकि मैं अपने काम के बारे में इतना पैशनेट था ना, दैट इवेंचुअली जितने भी लोग मेरे रास्ते में आए वो सब खुद ही रास्ते से दूर हो गए बिकॉज आई वॉज सो फोकस्ड ऑन माई पैशन। एंड जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, आई रियलाइज कि ये सिर्फ काम के लिए सच नहीं है यार, ये रिलेशनशिप्स के लिए भी सच है। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप में इतने सारे लोग बीच में आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस अपने प्यार पर और अपने रिलेशनशिप पे है ना, तो नो मैटर कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके प्यार को वो तोड़ नहीं सकते। जैसे कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके करियर और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता अगर आपका डिटर्मिनेशन ऑन पॉइंट है मेरे बॉस की तरह। और अगर आप अभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो, यू डू गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर, तभी तो मैं हूँ आपकी जिंदगी में आपकी ब्रोशी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी एंड आई एम अ ट्रू बिलीवर इन लव, क्योंकि मुझे लगता है जिसके पास लव है ना उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड।

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

ऐसे ढूंढ के चुन के मैं दो लोग लाई हूँ आज बात करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, पुरानी जीन्स पर आज हम ऐसे दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो पोल्स अपार्ट हैं, एकदम अलग अलग दुनिया, मतलब दुनिया एक ही है, फिल्मी दुनिया लेकिन अगर उनकी पर्सनालिटीज के बारे में आप सोचें तो वो बिल्कुल ही नॉर्थ एंड साउथ हैं। देखिए, एक तो अपने संजू बाबा संजय दत्त, 80s वाले संजय दत्त या बचपन वाले संजय दत्त, और दूसरे हैं द लेजेंडरी, द वेटरन कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब। है कोई तालमेल, कोई कॉमन पॉइंट? वैसे मैं सोच रही थी बाय चांस इन्होंने किसी फिल्म में साथ में काम किया है, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है। इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन टेल मी इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करके, डीएम करके @rj.charu rj.charu ये मेरा आईडी है। तो इन दोनों लोगों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल बातों पे ब्रेक, इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक। ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लाइफ वाले संजू बाबा, ऐसा सुनने में आता है कि जब ये 3-4 साल के थे और नरगिस जी के साथ अपनी मम्मा के साथ अपने फादर सुनील दत्त को विजिट करने उनकी एक फिल्म के सेट पर गए थे। ये फिल्म थी 1963 की मुझे जीने दो, जो डाकुओं के ऊपर थी। सुनील दत्त साहब इसमें एक्ट भी कर रहे थे, इसके प्रोड्यूसर भी थे। इस फिल्म की शूटिंग हुई थी मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में और एक बार तब के एक फेमस डाकू इस फिल्म के सेट्स पर पहुंच गए थे और छोटे से संजू बाबा किडनैप होते होते बचे थे।
2: कोशिश की थी, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे, तो दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक। उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। बोले अगर इसको उठा के ले जाएं कितना देंगे, तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। तो ये सही था, किडनैप नहीं हुआ, लेकिन
1: डाकुओं को आइडिया तो आ ही गया था। और मैं यानी कि चारू वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद यही पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: सागर में आज यार का जलवा दिखा दिया, जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया।
1: ये गाने के लिरिक्स हैं भाई।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा, जिसमें सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन थे, और इसी फिल्म का ये गाना मतलब कव्वाली, जिसमें पहली स्क्रीन अपेयरेंस हुई थी संजू बाबा की। जी 1981 की रॉकी नहीं, ये वो फिल्म थी जिसमें 10-11 साल के संजू बाबा पहली बार दिखाई दिए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था,
3: रेशमा और शेरा में एक गाना था उसमें मैंने वो काम किया था, छोटा सा था। ये महबूब स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी और डैडी को एक लड़का मिला था, दूसरा नहीं मिला था, तो मैं मिलने आया उनको तो मम्मी के साथ, तो उन्होंने बोला यार इसको कपड़े पहनाओ, इसको यहाँ बैठा यार जल्दी से। अरे बाप रे ये क्या, वो उन्हें सिर्फ हाथ ऐसे करना है और पापा को देखना है, और जब मैं ये बोलूंगा ना ये जो गाने में आ रहा है शेर, तो ऐसे करना है। वाह वाह वाह वाह, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन कैसे भी करके हो गया।
0: जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया, रेशमा और शेरा से। YouTube पे जाके देखो छोटे से संजू बाबा। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी चीज़ विद चारू ओनली।

0: बाबा में बाबा संजू बाबा।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और बचपन से ही बैड बॉय हैं ये। एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने किस्सा शेयर किया था कि क्या होता था जब इनके फादर सुनील दत्त से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इनके घर मिलने आते थे।
2: एक वेरांडा हुआ करता था, वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने जाग के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मैं बोर्डिंग स्कूल लॉरेंस स्कूल सनार में था 11 साल।
1: वहाँ भी इनकी शरारतें कम नहीं हुई, लड़कियों को लव लेटर्स लिखते थे ये।
2: लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी।
1: वैसे अपनी शरारतों के लिए इन्हें अपने मम्मी पापा से खूब डांट मार पड़ी है, खास करके मम्मा से किस तरह की मार पड़ती थी एक बार इन्होंने बताया था।
3: और माँ वो मतलब क्या वेस्टर्न पिक्चर देखी क्या कभी, गुड बैड एंड अगली, और हाँ तो वैसी थी वो चप्पल फेंकने में। वो लोग यहाँ से गन उतारते तो वो यहाँ से चप्पल।
1: लो बताओ, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के नीलम गीत गाता चल
0: बेशरम

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: और संजू बाबा, बचपन से बिगड़े दिल शहजादे ऐसे कैसे बन गए? एक बार एक इंटरव्यू में इनके फादर लेट सुनील दत्त साहब ने शेयर किया था।
2: हमारी तरफ से भी और इनके मामू जान की तरफ से भी, दोनों तरफ से एक प्यार मोहब्बत इतना ज्यादा था कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। और ये मेरा ख्याल है कि जिंदगी में मैंने इतनी नाज बर्दारी किसी की नहीं की होगी जो मैंने संजय दत्त साहब की। इसके अंदाज जो थे बिगड़ने के, कि एक बार इसके मन में कुछ चीज आ जाए कि ये मुझे करना है तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हम इटली में थे तो ये साहब कोई 3.5 साल के होंगे, वहाँ पे बाजार है बिया बेनीतो, तो वहाँ भारी रेस्टोरेंट होती है जहाँ कॉफी वॉफी की जाती है। इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी तो इसने शोर में जाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना। तो हम किसी का इंतजार कर रहे थे, मीटिंग थी किसी के साथ, तो हमने कहा आप घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते, अब किसी को मिलना है। तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। वो औरतें देख रही है, इटालियन औरतें देख रही है, वो माई गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूअल पेरेंट्स दिस पीपल आर। एक बच्चे को रुला रहे हैं, वो लौट रहा है तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाई चांस वो आदमी आ गया, इटालियन था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी। कहता क्या हो रहा है? मैंने कहा कि भाई मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता। तो कहता देन वी विल हैव अ मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी इटसेल्फ। सो ही वाज सिटिंग विद द कोचवान एंड वी वर हैविंग अ मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी।
0: समझ में आ रहा है कि हमारे बाबा बचपन से बाबा ही क्यों रह गए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली goes down the ground.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: संजू बाबा ने भाई बन के फिल्मों में विलन्स का बैंड तो बहुत बजाया है ना।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: लेकिन बचपन में उन्हें ड्रम्स, बोंगो ये सब बजाने का भी बहुत शौक था। एक बार एक टीवी शो में उनके फादर लेट सुनील दत्त, सिस्टर्स नम्रता और प्रिया दत्त ने उनके इस म्यूजिक के शौक के बारे में कुछ शेयर किया था।
2: वॉट अ ड्रम सेट।
3: हाँ, ड्रम सेट था, कुछ
2: मुहार भी था। यूज्ड टू बी, इट वाज लाइक अ अलार्म, बिकॉज़ भैया एक ही ट्यून बजाते थे, दैट वाज द स्कूल बैंड।
4: 71 में जब बांग्लादेश हम गए तो हमारे साथ लता जी, इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया, इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं, ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्रे करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो बजाऊंगा। हम इसको ले गए, तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए तो सारे म्यूजिशियंस थे, तो इससे ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था।
0: तभी से लाइफ का उल्टा पुल्टा बैंड बजा रहे हैं ये। मैं हूँ चारू आपके साथ, पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन।

प्यार लव इश्क मोहब्बत के साथ। वेलकम वंस अगेन, आप सुन रहे हैं मिर्ची पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और आज हम ऐसे दो पोल्स अपार्ट लोगों की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने संजू बाबा संजय दत्त की बात की, बचपन में वो कैसे थे, ऑफ कोर्स बहुत शरारती थे, आउट ऑफ कंट्रोल थे, और कैसे उनकी पहली फिल्म एक्चुअली रॉकी नहीं रेशमा और शेरा थी, जिसमें उन्होंने सा छोटा सा रोल किया था एज अ चाइल्ड एक्टर। नाउ द अदर आइकॉनिक एक्टर जिनके बारे में हम अब थोड़ी देर के बाद बात करने वाले हैं, वो थे जो पहले बॉम्बे में एक बस कंडक्टर थे और वो अपनी बस की सवारियों को बहुत एंटरटेन करते थे। उनकी ऐसी कुछ हरकतें एक फिल्मी हस्ती ने नोटिस कर ली और उनकी एंट्री हो गई फिल्मी दुनिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनी वॉकर साहब। करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिल्मों में एक शराबी इंसान का रोल निभाने की महारत जिनको हासिल थी वो थे एक महारथी कॉमेडियन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब, यानी कि जॉनी वॉकर साहब। और एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए, जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या उनका कोई ऐसा थिएटर का बैकग्राउंड था जो वो फिल्मों में आए थे।
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं, कभी काम नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंदौर से थे हम लोग और खाली सिनेमा देख देख के मुझे शौक हो गया था, तो चाहता था शुरू से कॉमेडियन बनना ही। और हम लोग रहते थे इंदौर में, लेकिन वहाँ तो कोई फिल्म का कोई सिलसिला था ही नहीं। कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुंबई आना हो गया फैमिली के साथ। ये 1942 में फैमिली के साथ फादर यहाँ आ गए थे, तो यहाँ आने की वजह से यहाँ मुझे कोई रास्ता मिल गया और काम भी मिलना शुरू हो गया। उसमें कामयाबी भी अल्लाह ने दे दी, सिलसिला चलता रहा बस।
0: और कौन से ऐसे कॉमेडियन थे जिनको देखकर ये इंस्पायर हुए?
1: कि उस जमाने में नूर मोहम्मद चार्ली करके हुआ करते थे, उनको मैं देखता था और उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर था मैं। इसलिए मैंने ये उनको पकड़ के और कॉमेडी की तरफ रागिब हुआ और कॉमेडी करना चाहिए।
0: और एक्चुअली क्या ही कॉमेडी करते थे भाई, जैसे ही स्क्रीन पे आते थे मजा आ जाता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: भाई 1940s और 50s में फिल्मों में काम करना, ऊपर से एज अ कॉमेडियन काम करना, मतलब मस्खरी करना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत बड़ा ये टैबू माना जाता था, तो क्या लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब की फैमिली इससे ओके थी? सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मेरे घर वाले भी कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फिल्म लाइन में दाखिल हो जाऊं, लेकिन फैमिली बहुत बड़ी थी, 10 बहन भाई, फादर मदर 12 आदमी थे, और बम्बई में 12 आदमी और अकेला मैं चलाने वाला चक्कर, तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम था और बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। वालिद को पता चला कि ये मैंने तो फिल्म में काम शुरू कर दिया, तो वालिद ने पहले तो मुझे मना किया, फिर मैंने कहा नहीं आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी और आप मुझे काम करने की इजाज़त दे दीजिए। अब वो मेहनत इतनी ज्यादा थी कि वालिद को मुझ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया था।
0: भाई वालिद साहब का ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल वाजिब था। एंड वो सारे अमेजिंग गाने जो जॉनी वॉकर साहब पे पिक्चराइज हुए,
1: गुरदत्त जी ने भी गाना दिया मेरे को, तो वो गाने भी सभी उतरे। उसके बाद रफी साहब ने मेरे लिए गाने इतनी अच्छी तरह गाए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ऐसा लगता था कि मैं ही गाने गा रहा हूँ।
0: तो चलिए इन्हीं पे पिक्चराइज्ड एक क्यूट सा गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

0: द लेजेंडरी आइकॉनिक कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब की पैदाइश इंदौर की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे बने कि इंदौर से उन्हें बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। सुनिए इस बारे में और अपने वालिद साहब के बारे में। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में जॉनी वॉकर साहब ने क्या शेयर किया था।
1: टेक्सटाइल में थे मेरे वालिद, बॉम्बे में भी आए इसलिए थे कि वो टेक्सटाइल के थे स्पेशल। वो यहाँ जब आए तो सितारा ऐसा गर्दिश में था उनका कि इंदौर भी छूटा इसलिए था कि वो मिल लिक्विडेशन में चला गया। बहुत बड़ी कंपनी थी, टेक्सटाइल किंग ऑफ इंडिया बोले जाते थे वो, तो उनका दिवाले निकल गया। वालिद को यहाँ पर भी नौकरी मिली। अब सितारा मैंने बताया ना आपको, गर्दिश में था, तो जिस मिल में काम करते थे उसका भट्टा बैठ जाता था और वो बंद हो जाता था किसी वजह से, तो तीन चार मिल यहाँ बंद हो गए। बीच में गैप आ गया जहाँ वालिद को मेरे नौकरी बहुत अच्छी मिल गई, वरंगल में हैदराबाद नवाब का मिल था, तो उनको वहाँ चांस मिल गया। जब उनको ये हैदराबाद की ऑफर आई तो मैंने सोचा कि ये हैदराबाद नवाब का तो दिवाला निकल सकता ही नहीं है, तो ये सोच के मैंने कहा कि चलो भाई आप उधर चले जाइए और मैं यहाँ बॉम्बे में रहूंगा। मैं
0: भाई, किस्मत ने जिसको जहाँ पहुँचाना होता है पहुँचा ही देती है। जैसे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इंदौर से निकलकर बॉम्बे पहुँच गए, जॉनी वॉकर बन गए। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: ऐसा सुनने में आता है कि बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के एक ड्रंकट मैन, एक शराबी इंसान के एक्ट से गुरुदत्त इतने इंप्रेस हो गए कि उनको जॉनी वॉकर नाम दे दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, द आइकॉनिक लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब, गुरुदत्त की फिल्में और कैसे उससे वो आगे बढ़े, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: तो जब गुरुदत्त के पास मैंने पहली दफा बाजी में काम किया, जहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, वो मेरी पहली पिक्चर थी बाजी, जो गुरुदत्त साहब ने डायरेक्ट की थी और वो उनकी पहली पिक्चर थी। मेरी भी पहली पिक्चर ऐसे थी कि वहीं से मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। इसके पहले 25-30 पिक्चरों में काम किया था, मगर वो इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, एक डायलॉग बोलो, ये बोलो, वो। तो वहां से सिस्टम ये हो गया कि फिर वो गुरुदत्त जी वो क्या करते थे कि पहले सब्जेक्ट जो उनको पसंद होता था वो सब्जेक्ट ले लेते थे, और सब्जेक्ट लेने के बाद वो बैठ के सोचते थे कि इसमें कौन से कैरेक्टर को कॉमेडी का रोल देना चाहिए, बना देना चाहिए। तो फिर वो राइटर के साथ, अबरार अलवी जो उनके खास राइटर थे, उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते थे और सोचते थे कि भाई ये कैरेक्टर जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर उसको कॉमेडी ट्रैक पे एस्टेब्लिश करते थे पूरी तरह से। उसी वक्त से ये हो गया कि कॉमेडियन पार्ट ऑफ द स्टोरी होता था।
0: वाह, व्हाट अ स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: Yeah.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू।

मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा, आज तो हम बात कर रहे थे दो ऐसी पर्सनालिटीज की जो पोल्स अपार्ट हैं। शुरुआत में हमने संजू बाबा संजय दत्त की बात की, 80s वाले संजय दत्त, बचपन वाले संजय दत्त, फिर जॉनी वॉकर साहब की हमने बात की। कल भी एक खास इंसान के बारे में बात होगी, लेकिन एक और खास इंसान बात करेंगे। अभी आपको कल ही पता चलेगा, सब कुछ थोड़ी ना बता देते हैं। अभी बातों पे ब्रेक, ये खूबसूरत गाना सुनेंगे। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ली उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम एचडी2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किसी बात को पकड़ के बैठना खुद को हर्ट करना ही होता है। आइए इसी पेन से हील होने का सॉल्यूशन समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो ये तो हमने बात कर ली कि मुझे क्या करना है। दूसरे आपने कहा था कि उनके लेवल पे, सपोजिंग ये साइड रिवर्स्ड है, अब मैं जो वो हूँ जो ये पकड़ के बैठा हुआ है, तब मुझे क्या करना चाहिए?
4: रियलाइजेशन, बहुत पहले तो फर्स्ट ये रियलाइज करें कि आपने पकड़ के बैठा हुआ है, यू आर क्रिएटिंग दैट हर्ट। आज एक व्यक्ति है, कल कोई दूसरा होगा। यू कैनॉट चेंज एवरी वन। ये एक एक्सपेक्टेशन कि सब मेरे अनुसार हो, ये तो हो नहीं सकता। अब देखिए, एक दिस इज अ रियल स्टोरी। अभी सम डेज बैक एक बहन थी, शी वॉज शेयरिंग कि वो जब बचपन में थी सो शी वॉज फिजिकली अब्यूज्ड बाय अ फैमिली मेंबर, घर में ही किसी से, एंड इट टुक अ टोल ऑन हर। और लगभग 20 साल बीत गए, ऑलमोस्ट 2 decades, एंड शी वॉज होल्डिंग गॉट एंड शी वॉज रीलिविंग, और बहुत ही उसने उस चीज का दर्द एक्सपीरियंस किया। एंड देन थेरेपी आदि करी, और उस थेरेपी आदि में उसने रियलाइज किया कि ये पकड़ने से तो मैं अपने को ही हर्ट कर रही हूँ। तो उसने फिर कहा कि ठीक है, आई विल मीट दिस पर्सन एंड आई विल फॉरगिव हिम। फाइनली आई वांट टू रिलीज माय सेल्फ फ्रॉम दिस पेन, आई विल फॉरगिव हिम। एंड फैमिली का ही कोई मेंबर था, वो बड़ा, कई बार ये चीजें फैमिली के अंदर ही बहुत हो जाती हैं। तो उसने उसके साथ बैठ करके उसको बोला, ठीक है, जो कुछ भी हुआ मैं आपको फॉरगिव करती हूँ। और वो व्यक्ति उसको देख कर कहता है, किस चीज की फॉरगिवनेस? मतलब she said, किस चीज की फॉरगिवनेस? हाँ, क्या हुआ मतलब? she said, ऐसा आपने मेरे साथ किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। एंड देन ही लुक्ड एट हर एंड सेड, अच्छा, इतना प्रभाव पड़ा उसका आपके ऊपर, मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया। मूव ऑन, इतनी सी बात के लिए थोड़ी ना। एंड शी वॉज शॉक्ड। उसको इतना धक्का लगा कि 20 years से मैं सफर कर रही हूँ और उस व्यक्ति को तो उस चीज की रियलाइजेशन भी नहीं है। एंड इन दैट मोमेंट शी रियलाइज कि 20 साल जो उसने सफर किया वो उसने नहीं किया था। उसने जो किया वो तो गलत था, लेकिन उसके बाद 20 साल मैंने जो अपने साथ किया, बार बार उसको रिलिव किया, लोगों को ट्रस्ट नहीं किया, मैन को ट्रस्ट नहीं किया, किसी अच्छे रिलेशनशिप को ट्राई नहीं किया, आई डिड दैट टू माई सेल्फ। एंड इन दैट मोमेंट शी सेड, आई हैड अ चॉइस, ईदर टू फ्री माई सेल्फ और होल्ड ऑन टू इट। सो ये तो बहुत बड़ा केस है, पर जब आप छोटे में नहीं करते तो आप बड़े में भी नहीं कर सकते। और अगर आप छोटे छोटे में आपको लेट गो की आदत है तो आप बड़े को भी लेट गो कर पाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि उसने जो किया वो राइट है। वी नेवर सेइंग दैट। उनका बिहेवियर गलत था, किसी ने क्रिटिसाइज किया वो गलत था, कोई रूट था वो गलत था। नाउ फॉर हाउ लॉन्ग यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन, रिपीट एंड क्रिएट हर्ट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हमें हमेशा किए गए कर्मों का फल मिलता है? आइए इसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये जो आपने एग्जांपल दिया और जहाँ पे सिस्टर ने उस इंसान को कन्फ्रंट किया और बोला कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया, मैं आपको फॉरगिव करती हूँ, वो कहते हैं कि इस बात के लिए फॉरगिवनेस, तो वो जो धक्का लगा इस सिस्टर को वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने फिर भी बोला कि चलो मैं इसको 20 साल से पकड़ के बैठी हूँ, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एट सम लेवल ये फिजिकल अब्यूज था, राइट? तो इनके लिए ये, इन्होंने डिसाइड किया मुझे मूव ऑन करना है, चलो मैं इनको माफ करती हूँ, लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं माफ करूंगी और उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला कि किस बात का, चलो छोटी सी बात है मूव ऑन, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है छूट गया यार, मैं 20 साल से सफर कर रही हूँ, आई वॉज लुकिंग फॉर क्लोजर।
4: छूटता कोई नहीं है, ये आप समझ लें, छूटता कोई नहीं है, इसीलिए तो फिर कर्म का लॉ बार बार याद करना पाता है ना। छूट आपको लग रहा है अभी छूटे हुए हैं, क्यों? क्योंकि जो अगर आप देख भी रहे हैं कि कोई गलत कर रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ा, वो पीछे की प्रारब्ध है। बार बार याद रखना पड़ेगा, और हमें भी मिली होती है पीछे की प्रारब्ध। देयर इज सो मच इन आवर लाइव्स दैट वी रिसीव जिसकी हमने कोई मेहनत नहीं की होती। अच्छा परिवार है, अच्छी सफलता है। मैं तो कई बार देखती हूँ, आज भी जब हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे थे, कितनी बार यू शुड यू नो ऑब्जर्व पीपल। हम लोग स्टेशन पर खड़े हुए थे, लाइन में खड़े हुए थे, ट्रेन के वेट कर रहे थे, कितने लोग होते हैं वहां पर। एक भाई था, शूज पॉलिश करते हैं, आपने भी देखा है ट्रेन में, 5-10 मिनट आप मेहनत करो उसके बाद आपको 20 रुपीज मिलते हैं। आप देखते हैं ये भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, धूप में गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, हम तो फिर कितने कंफर्ट में मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनकी प्राप्ति और हमारी प्राप्ति में जमीन आसमान का अंतर है। तो एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये प्रारब्ध ही तो है ना, कुछ तो कर्म ऐसे हैं जिसके कारण आज तन अच्छा है, धन भी है, परिवार भी है, सो अ लॉट वी ऑल्सो रिसीव जिसके लिए हमने इतनी मेहनत नहीं करी जितना हमें मिला हुआ है। तो ऐसे हम भी कई बार किसी को देखते हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जीवन बहुत अच्छा है क्योंकि कुछ पहले का बीज बोया है जो मिल रहा है, पर जो आपने गलत किया है आप बच नहीं सकते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लॉ ऑफ कर्मा में भरोसा रखिए ताकि जिंदगी सुकून से गुजर सके। आइए इसी बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो मैं जब सुबह आ रहा था, मैंने सोचा कौन सी शर्ट पहनूं, और मैंने ये शर्ट पहनी। और जब मैं यहाँ बैठा रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं यहाँ पे पेंसिल अपने पॉकेट में रख रहा था, और अचानक मुझे ये जो है ये सिस्टर श्रेया ने ही मुझे किसी और दिन दिया था। ये मेरे जेब में रह गया होगा और शायद धुल भी गया, लेकिन धुलने के बाद भी ये इसमें मिटा नहीं। और इसमें बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि देख के सुबह पहले मेरा दिन बन गया। इसमें लिखा हुआ है कि योर हार्ट ओवरफ्लोज विद फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस एनेबलिंग यू टू ओवरलुक ऑल दैट वीकेंड्स एंड अप्रिशिएट ऑल दैट एम्पावर्स। तो ये बहुत खूबसूरत बात है और इसको देख के ही दिन बन जाता है। तो आप कह रहे हैं कि कभी कभी पीछे की प्रारब्ध, जो पीछे का जो रहता है, उसका भी हमको बाद में मिलता है।
4: इसमें ये चीज जरूर है, देखो दो लॉज है जो काम करते हैं। एक है अगर आपके पास फिजिकल अब्यूज है, आपको अपनी कंट्री का भी जो कानून है हमारे लिए बना हुआ है
3: उस पे थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा।
4: हमें मन में इतना व्यर्थ सोचने के जगह अपने मन का ध्यान हमें रखना है, बाकी कानून की मदद हम ले सकते हैं। हमें बाहर इतना सहन करने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियों का सामना करना होता है। आज कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कहीं पर भी आपको डोमेस्टिक वायलेंस है, कहीं फिजिकल अब्यूज है, कोई भी ऐसे चैलेंज से आप गुजर रहे हैं, ये लॉस क्यों बने हुए हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। आप फेथ रख करके उनका सहयोग ले सकते हैं, और फिर भी अगर किसी समय पर ये कानून की भी मदद नहीं मिलती तो एक फेथ हमेशा होना चाहिए कि वो जो कर्मा का लॉ है वो तो वर्क करता ही है।
3: इसलिए कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देर है बस।
4: हाँ, देर है, अंधेर नहीं है। और देखो किस रूप में वो लौट कर आता है, चार रूप में। वो सेम रूप में लौट कर नहीं आता कि आपने किसी के साथ गलत किया, शोषण किया, फिजिकल अब्यूज, तो उसी रूप में लौट कर आएगा, ऐसा
3: नहीं है।
4: देयर आर फोर वेज, या तो धन के रूप में कोई ना कोई धन का चैलेंज, या जन के रूप में कोई ना कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तन के रूप में कोई ना कोई फिजिकल एलिमेंट, मन के रूप में कोई ना कोई मानसिक बीमारी, पर आता जरूर है।
3: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: रुतु है अहमदाबाद से, वो लिखती हैं कि मैं बार बार अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना चाहती हूँ, जैसे सुबह जल्दी उठना या फोन से दूर रहना, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए?
3: दृढ़ता की कमी है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन।
2: जी,
3: सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्टार्ट भी करते हैं। 31 दिसंबर को तो ये खास होता है एक न्यू थॉट, एक न्यू रेजोल्यूशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि दृढ़ता। तो कोई भी एक अच्छा थॉट लेना कि सुबह जल्दी उठना है, वो बीज है।

0: लेकिन बीज ऐसे ही फलीभूत नहीं होता, उसको रोज पानी डालना पड़ता है। तो अगर आपने कोई थॉट लिया भी है लेकिन अगर आप डिटर्मिंड नहीं होंगे, डिटर्मिनेशन एक पावर है, तो आप जब उस पावर से वो चीज रोज रोज करेंगे तो ही रिजल्ट निकलेगा। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट बीइंग डिटर्मिंड, देन पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस, देन फेसिंग द चैलेंजेस जो उस रोड पर आएंगे। समझो आप रोज सुबह उठने का ही सोचते हैं, ऑफिस में कोई जरूरी प्रोजेक्ट आ जाएगा, कोई और घर में बात आ जाएंगी, पर उस चीज पर, इसलिए कहा ना डिटर्मिंड, करना है तो करना ही है, कंसिस्टेंट होना, तो वो चीज हो जाएंगे, दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाएं।
1: एक काम और कर सकती हैं ऋतु, मेरी तरफ से सजेशन है, एक पॉडकास्ट है, बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट है जिसका नाम है बियॉन्ड द टू डू लिस्ट। ये अगर आप सुनेंगे तो इससे भी शायद आपको, जैसे कभी कभी सिस्टर कहती हैं कि एक्सटर्नल जब कुछ चीजें आप अच्छी देखती सुनती हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है, ये भी कोशिश करिए शायद आपके काम आ जाए।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं ना तो हमें ऐसी चीजें थोड़ा सुनना चाहिए, हम मोटिवेटेड होते हैं।
1: हाँ।
0: आखिर तो डिटर्मिनेशन की भी जो पावर है वो कहाँ से आएंगे, कोई मोटिवेटिंग फैक्टर तो चाहिए। तो अच्छे फ्रेंड्स होना, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना, ये सारी चीजें हमें वो जैसे एक
1: प्रोत्साहन देती है,
0: पुश का काम करती है।
1: बिल्कुल।
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: विश्व लिख रहे हैं कि मुझे लाइफ में स्टक फील होता है, जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता तो आप मोटिवेशन कैसे बनाए रखते हैं, इस बारे में बताइए।
3: ऐसे मोमेंट्स हम सबके जीवन में आ जाते हैं, स्टक हम उसको कहते हैं। हमें लगता है कि वी हैव प्लान्ड आवर लाइव्स इन अ सर्टेन वे एंड समटाइम्स इट इज टोटली डिफरेंट
2: फ्रॉम व्हाट वी प्लान्ड
3: तो हमें कई बार लगता है कि वी आर वेरी स्टक, वी आर नॉट ग्रोइंग।
2: जी,
3: समटाइम्स आई फील दोज आर द एग्जैक्ट मोमेंट्स व्हेन यू आर ग्रोइंग।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
3: सच में, क्योंकि कई बार आपको ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल अकम्प्लिशमेंट में लगती है,
2: लेकिन
3: कभी कभी स्टक होना और चीजें आपके अनुसार न चलना, आपकी जो उस समय पर एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती है, वो एक्सेप्टेंस पावर कभी भी नहीं बढ़ती है। तो एक्सेप्टेंस पावर है, अकोमोडेट करने की पावर है, लेट गो करने की पावर है, वो सारी पावर्स कई बार तब बढ़ती हैं जब आप स्टक होते हैं। नो, इवन लेटिंग गो दैट लाइफ हैज टू बी दिस वे, हमारी प्लानिंग और डिवाइन प्लानिंग कई बार बहुत अलग होती है। और डिवाइन प्लानिंग में जो मैजिक छिपा होता है वो कई बार उस समय हमें नहीं दिख रहा होता। इसलिए फिर वो जो गीता की लाइन है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। तो उस चीज के ऊपर फेथ रखकर डोंट टेल योरसेल्फ दैट यू आर स्टक। मे बी थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू हैड प्लान्ड, दैट्स इट। इट इज जस्ट नॉट गोइंग द वे यू हैड प्लान्ड, बट इट इज परफेक्ट।
2: एब्सोल्युटली,
3: इट इज परफेक्ट, एक्यूरेट, एंड देयर इज समथिंग वेरी गुड स्टोर्ड इन दैट।
2: कहते हैं कि लाइफ हैपेंस व्हेन यू बिजी मेकिंग प्लान्स। तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल सब सही है, आप सही जगह पे हैं। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीडेड टू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: कुछ सवाल आए हैं सिस्टर श्रेया। तो पहले है सुयश लाढ़ा जी हैं पुणे से, वो लिखते हैं कि डर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं या इसे कंट्रोल कैसे करें, जैसे कि किसी अपने को खोने का डर, बीमारी का डर, फेल होने का डर या कुछ बुरा होने का डर। प्लीज हेल्प मी।
3: डर वैसे देखा जाए तो कमजोर मन की निशानी है, क्योंकि जिन चीजों की बातें उन्होंने लिखी है वो सब हमने अक्वायर की है, चाहे वो
2: सही बात है,
3: और वो सब छूटनी है एक न एक दिन। तो डर उनको छूटने का नहीं है, चाहे वो आपकी खुद की बॉडी है, आपका कोई लव्ड वन है, कोई पोजीशन है, इनमें से कोई भी चीज परमानेंट तो है नहीं।
2: सही बात है,
3: छूट सकती है। इफ आई से कि नहीं नहीं कुछ नहीं छूटेगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, तो ये तो सत्य नहीं है। सत्य तो यही है कि जो चीजें आपने अक्वायर की हैं वो कभी ना कभी छूट सकती है।
2: जी बिल्कुल।
3: लेकिन दूसरा सत्य ये है कि जो चीजें आपने अक्वायर की है उनको एंजॉय करना जरूरी है। कमजोर मन क्या कर रहा है, उनको पकड़ रहा है, उनसे अटैच हो रहा है, खोने से पहले अपने मन में देख रहा है कि मैं कहीं ये खो ना दूं, मैं ये कहीं खो ना दूं।
2: सही बात है।
3: ये थॉट उनको डर क्रिएट कर रहा है। तो आप पहले इस जीवन के सत्य को एक्सेप्ट करें कि ये सब चीजें हमने जो अक्वायर की हैं ये पेरिशेबल है, इनमें से कुछ भी छूट सकता है, लेकिन जब तक ये हमारे साथ है क्यों ना हम इसका सुख लें, हम इसको एंजॉय करें, चाहे वो हमारे लव्ड वंस हैं, चाहे वो हमारा करियर है, हम उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें और इस थॉट को अपने अंदर से खत्म करें।
2: क्या बात है। वैसे भी कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जब तक डर से डरोगे, डर आपको उतना ही डराएगा। जिस दिन आप डर को डराओगे उस दिन डर आपसे डरेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
9: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
10: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
13: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक सवाल आया सिस्टर श्रेया की। गुड मॉर्निंग विशाल और सिस्टर श्रेया, मैं संजय थाने से बात कर रहा हूँ, और मेरे बड़े भाई पिछले 10 सालों से बात नहीं कर रहे। वजह है बंटवारा। उसके चलते हर रोज सुबह मुझे उसके प्रति काफी नकारात्मक विचार आते हैं कि वो कभी सुखी नहीं रहेगा। मैं इस विचार से बाहर कैसे निकलूं?
2: जब आप ये विचार कर रहे हैं कि वो कभी सुखी नहीं रहेगा, तो एक्चुअली तो आप सुखी नहीं रह रहे।
1: हाँ, यू हैव टू लेट गो फर्स्ट। सही बात है।
2: बिकॉज़ लुक एट द थॉट, जो आप सोचेंगे वो आप फील करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: अब मैं सुबह सोच रही हूँ वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, उनके साथ गलत हो, ये मैं सोच रही हूँ।
1: सही बात है।
2: ये वो नहीं सोच रहे, ये मैं सोच रही हूँ। तो दुखी कौन होगा?
1: मैं।
2: और मैं दुखी होंगी, फिर उसका इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पर पड़ेगा, मेरे काम पर पड़ेगा, मेरी तकदीर के ऊपर पड़ेगा।
1: सही बात।
2: आप उनका नुकसान नहीं कर रहे, पहली चीज तो आप अपना नुकसान कर रहे।
1: क्या बात।
2: फिर आपका जब नुकसान होगा ना, तो हम पता क्या कहेंगे? पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई।
1: हाँ, उन्हीं की होगी।
2: उन्हीं की होगी।
1: हाँ, तो ब्लेम भी उन्हीं को करेंगे।
2: पर हम कौन किसको नजर लगा रहा है?
1: अपने आप को, खुद को, के विचार भी मेरे ही हैं।
2: रोज सुबह उठ करके अपने को नजर लगा रहे हैं। तो आपके साथ ही जीवन में कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट थिंकिंग राइट। चलो, हो गया बंटवारा, जो होना तो हो गया, अब हम भी सुखी रहें। हाँ। वो भी सुखी रहे।
1: और द वेरी फैक्ट कि संजय आपने इसके बारे में सोचा और आप इसको बदलना चाहते हैं, आई थिंक आपने पहला कदम ले लिया है और आप आगे भी जरूर सफल।
2: कभी कभी हम बदलना नहीं चाहते, पर वो हमें जैसे कांटा चुभे जा रहा होता है ना।
1: हाँ।
2: अब वो चुभ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसलिए भी ऐसा होता है मैं क्या करूं। पर आप जो कह रहे हैं वो जरूरी है। बदलेंगे नहीं, कांटे को निकालेंगे नहीं,
1: तो बदलाव नहीं।
2: कांटा तो आपको ही चुभ रहा है ना।
1: सही बात।
2: एवरी टाइम वी थिंकिंग नेगेटिवली फॉर समबडी एल्स, वी आर हार्मिंग
1: आवरसेल्व्स। ये समझना
2: जरूरी है। ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स टू डाई।
1: जी बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर राज कोलकाता से लिखते हैं, हेलो रिचार्ज मंत्रा टीम, मेरा सवाल है, इस ग्रीड से भरी दुनिया में एक प्योर स्पिरिचुअल और पायस जिंदगी जीने का राज क्या है?
3: समझ। अगर आपको समझ मिल जाती है कि मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है, तो फिर भले सब भी गलत कर रहे हो, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आप करेंगे उससे आपकी डेस्टिनी बनेगी, जो वो करेंगे उससे उनकी डेस्टिनी बनेगी। तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में न आकर के राइट क्या है, भगवान क्या कहता है, उस मार्ग पर
2: चलेंगे। सही बात है।
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

कि मैं गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा, रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: कभी नोटिस किया अलार्म क्लॉक से ज्यादा डेंजरस तुम हो, जो कहता है बस 5 मिनट और सो जाऊंगा और उठता है पूरे 1.5 घंटे के बाद। आई नो यू बिकम द कॉफी के बिना वाला वर्जन लोडिंग इन द मॉर्निंग। और मैं हूँ तुम्हारी मॉर्निंग वाली दोस्त, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और यार देसी लाइफ अब्रॉड में वैसे इतनी सारी मल्टीटास्किंग चलती रहती ना, एक हाथ में कॉफी है, दूसरे हाथ में कार कीज है और दिमाग में बस एक ही सवाल है कि लंच पैक किया कि नहीं किया। जो भी प्लान कर रहे हो ना आज, ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, क्लासेस, ग्रोसरी रन या फिर दुनिया को कन्विंस करना है कि हाँ आई एम डूइंग फाइन, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ चिपकाए रखो, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हम करने वाले हैं ढेर सारी गपशप और साथ में होने वाली हैं अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ढेर सारी यहाँ वहाँ की बातें और बीच में चलाऊंगा मैं तुम्हारे लिए मिर्ची दैट बैंगर्स। देखो मैं तो शुरू हो चुकी हूँ, मेरा नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। And now stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Listener MI, back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
11: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
9: Mirchi, fresh maal.
12: Love, loss, or hope ka musical safar. Ve Junoon.

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ, और चलो करते हैं एक क्विक सा टाइम ट्रैवलिंग जर्नी। सबसे पहले चलते हैं 1619 में। आज ही के दिन अमेरिका की पहली रिप्रेजेंटेटिव असेंबली हाउस ऑफ बर्जेसेस वर्जीनिया के जेम्स टाउन में मिली थी। फिर 1762 में आज के दिन बगदाद को अब्बासिड खलीफ अल मंसूर ने एस्टैब्लिश किया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1945, वर्ल्ड वॉर टू के फाइनल डेज में यूएसएस इंडियनापोलिस को जापानीज सबमरीन ने टॉर्पीडो कर दिया था। बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट था जिसमें लगभग 900 सेलर्स की जान चली गई थी। 1956 में यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने इन गॉड वी ट्रस्ट को अमेरिका का ऑफिशियल मोटो बना दिया था। और फिर आया 2012, वो दिन जो इंडिया शायद कभी ना भूले। 3 पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो गए और करीब 620 मिलियन लोगों की बिजली चली गई थी। वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्लैकआउट। यार हिस्ट्री कभी इंस्पायरिंग होती, कभी इमोशनल और कभी बहुत ही ज्यादा फिल्मी। और फिल्मों से याद आया, मिर्ची दैट बैंगर्स आर वेटिंग राइट हियर राइट नाउ फॉर यू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: Batting तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. My name is Priscilla and this is Mirchi Mornings.
2: Mirchi Watch It. Mirchi Watch It.
1: 6:45 PM के आसपास, जो कि इंडिया टाइम 4:15 AM है, नितेश तिवारी की मच अवेटेड रामायणा का ट्रेलर रिलीज हुआ। इंडिया में इसे ब्रह्म मुहूर्त में लॉन्च किया गया और ट्रेलर की लेंथ है 4 मिनट्स एंड 9 सेकंड्स की। ट्रेलर में रणबीर कपूर लॉर्ड राम के रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन फैंस की ईगल आईज ने एक सरप्राइज पकड़ लिया, उन्हें लॉर्ड परशुराम के रूप में भी दिखाया गया है। तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं सेम एक्टर, लेकिन वाइब्स दोनों की बहुत अलग अलग है। फिल्म में साई पल्लवी हैं गॉडेस सीता के रोल में, यश बने हैं रावण और रवि दुबे बने हैं लॉर्ड लक्ष्मण। हाँ, एक चीज है जिसने फैंस को सरप्राइज किया है, ट्रेलर में सनी देओल जो कि लॉर्ड हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी झलक तक नहीं मिली है। तो सस्पेंस अभी फुल ऑन बना हुआ है, बट अपेरेंटली दिस इज जस्ट ट्रेलर 1। देयर विल बी अपकमिंग ट्रेलर्स दैट माइट शो सनी देओल। बस एक ही सवाल है, ट्रेलर देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या था? अगर तुमने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो अभी की अभी देखो, और देख लिया है तो मुझे डीएम करके बताओ कि क्या तुम्हारा रिएक्शन है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? टेल मी एवरीथिंग। डीएम इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzylin, New Jersey. Conditions apply.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और चलो देखते हैं कि आज के दिन हमारा वातावरण यानी कि वेदर कैसा रहने वाला है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 67 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास, स्काई जो है वो क्लाउडी है लेकिन फील हो रहा है 68 डिग्रीज के आसपास। हाँ जी देखो, अब तक थोड़े से क्लाउडी बना हुआ था लेकिन अब सनशाइन की झलक मिल सकती है, पर शाम को 5 बजे के आसपास लाइट ड्रिजल के चांसेस भी हैं। तो अगर तुम ऑफिस के बाद ग्रोसरी या चाय डेट का प्लान कर रहे हो तो अम्ब्रेला को साथ में लेकर जाओ। आज का हाई रहने वाला है 78 डिग्री फारेनहाइट और लो रहने वाला है 67 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। एंड गुड न्यूज ये है, कल जितनी गर्मी थी उससे आज थोड़ा सा बेटर हो चुका है। कल मर्क्यूरी ने हिट किया था 82 डिग्री फारेनहाइट तक एंड आज थोड़ा सा रिलैक्स्ड एंड चिल मोड रहने वाला है। वैसे पिछले 24 आवर्स में 12 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है एंड अगले 24 घंटों में भी बारिश की गुंजाइश है, यानी कि 2 मिलीमीटर की और बरसात एक्सपेक्टेड है। मतलब कि रोड्स थोड़े से वेट हो सकते हैं, तो ड्राइव सेफ, ब्रेक स्मूथली लगाना और कॉफी अपनी स्ट्रांग रखना, और साथ साथ में आज लेयर के प्लेयर फिर से बनना है तुम्हें क्योंकि वेदर काफी फ्लक्चुएट कर रहा है थ्रू आउट द डे। व्हाइल गोइंग आउट वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ के साथ, आज लेयर के प्लेयर फिर से बनना है तुम्हें क्योंकि वेदर काफी फ्लक्चुएट कर रहा है थ्रू आउट द डे। व्हाइल गोइंग आउट वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ के साथ वाला एंड अ

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला और ये है मिर्ची आवा का थ्री, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की है, जो जॉर्डन में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस पे हुए ईरानियन मिसाइल अटैक के रिस्पांस में बताया जा रहा है। ये डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच बढ़ते टेंशन्स के बीच आई है। सिचुएशन फिलहाल इवॉल्व हो रही है और दुनिया की नजरें इस पर बनी हुई है। नव अक्टूबर इंडिया के महाराष्ट्र ने स्कूल्स के आसपास हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करते हुए एक नया रूल लाया है। अब स्कूल्स के 50 मीटर्स के अंदर चिप्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे अनहेल्दी स्नैक्स बेचने पर बैन रहेगा। एंड फाइनली नंबर थ्री पर क्रिकेट से, इंडियन क्रिकेट के काम, क्लासी और डिपेंडेबल बैटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने इंडिया के लिए 5000 से ज्यादा टेस्ट रन्स बनाए हैं और अपनी कंपोस्ट बैटिंग से कई यादगार इनिंग्स दी हैं। थैंक यू जिंक्स फॉर ऑल द मेमोरीज, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इनिंग्स। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा.
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
12: मिर्ची, फ्रेश माल.
13: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स, दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि बिराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और ये स्टोरी जो मैं अब सुनाने वाली हूँ, ये प्रूफ है कि रियल लाइफ में कभी कभी बॉलीवुड से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो हुआ ये कि हमारे उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में एक ट्रक ड्राइवर साहब जो है वो मध्य प्रदेश से भिंड देहात पुलिस स्टेशन पहुंचे सिर्फ लुंगी पहनकर। यहाँ तक ठीक है। उन्होंने पुलिस को बताया कि रात को थोड़ी सी ज्यादा ही सेलिब्रेशन हो गई उनकी, मतलब थोड़ा लिटिल लिटिल चढ़ा लिया उन्होंने। जब उनकी नींद खुली तो उनकी ट्राउजर्स गायब हो गई थी और ट्राउजर्स के साथ गायब हुए 21,500 रुपीस, साथ में उनका आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस भी। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इतनी ड्रिंक हो गई थी कि उन्हें ये भी याद नहीं था कि ट्राउजर्स आखिर खोए कहां पर हैं। पुलिस ने उनकी बात सुनी, स्टेशन हाउस ऑफिसर ने उनके घर उनको पहुंचाने के लिए 7,400 रुपीस की मदद भी की और साथ में एक सॉलिड लाइफ टिप भी दिया, पैंट का ध्यान रख के अल्कोहल से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वॉलेट का बैकअप हो सकता है, दुनिया में आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ बन जाएगा, तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा, लेकिन एक बार जो है तुम्हारी ट्राउजर जो है वो चोरी हो गई तो फिर उसका मिलना मुश्किल ही है। वैसे हमारे इंडिया में ऐसे हटके बहुत सारे किस्से रोज होते हैं, तुम्हें कुछ पता है तो तुम भी मुझसे शेयर कर सकते हो, हम सबसे शेयर कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाती तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ. गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन. ज्योत्सना एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लो.
5: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती. फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी. टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 732-997-2409.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: चलो चलो सेलिब्रेशन का टाइम हो चुका है. आज तुम्हारा अगर बर्थडे है तो एक बात याद रखना, कैलोरीज आज के दिन काउंट नहीं करती है. अलार्म क्लॉक भी आज के दिन मैटर नहीं करती, और एज वो तो सिर्फ यार केक पर कैंडल्स लगाने के लिए एक नंबर होता है. गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है प्रिसिला, ऑफ कोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबकी तरह से हैप्पी बर्थडे टू यू विद अ जादी झप्पी एंड पप्पी. चाहे तुम कहीं भी हो, फिलहाल ऑफिस में, ट्रैफिक में, या फिर सुबह सुबह चाय बना रहे हो, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है. खुश रहो, मस्त रहो, और केक का थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्लाइस खा लेना, बिल्कुल गिल्ट फ्री. अब सुनते हैं कि आज के दिन तुम्हारे साथ अपने बर्थडे स्क्वाड में कौन शामिल है. सबसे पहले आल बी बैक वाले एक्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि एक्टर नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉडी बिल्डिंग का आइकॉन है. मास्टर स्टोरी टेलर क्रिस्टोफर नोलन, ये मेरे और बहुत सारे और लोगों के भी फेवरेट मूवी डायरेक्टर होंगे. इन्होंने हमें बहुत सारी अमेजिंग मूवीज दी है, द डार्क नाइट, इंसेप्शन एंड ओपनहाइमर, एंड अभी रिसेंटली द ओडिसी. और अगर तुम्हारी भी सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी तरह एकदम ऑसम है तो तुम आज अपना बर्थडे शेयर कर रहे हो लीजा कूड्रो के साथ, यानी कि हमारी द फॉरएवर क्यूट एंड अमेजिंग फीबी बुफे फ्रॉम फ्रेंड्स. ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हिलरी स्वैंक भी आज ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है. देन वीव गॉट लॉरेंस फिशबर्न from The Matrix, super energetic Terry Crews and filmmaker Richard Linklater. यार मतलब आज के दिन बहुत ही ज्यादा ऑसम लोग इस धरती पर आए थे, और अगर आज तुम भी आए हो यहाँ पर तो टैलेंट, एक्शन, कॉमेडी, क्रिएटिविटी एंड अमेजिंग टाइमिंग, ये सब कुछ तुम्हारे कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं, यानी कि तुम भी ऑसमेस्टेस्ट हो. तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, विशिंग यू हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ढेर सारी सक्सेस. अभी तुम मुझे अपने बर्थडे शाउट आउट्स भेज सकते हो फॉर योर सेल्फ, या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए, या लव्ड वंस के लिए, या फिर तुम मुझे इनवाइट ही कर सकते हो अपने बर्थडे पार्टी में. सेंड मी एवरीथिंग एट मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, दैट्स माई हैंडल ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड अगर व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड stay hot.

0: इसको ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब हम सुनेंगे गोल्ड आजकल क्या कर रहा है।
2: राज वाज विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,080, $4,080 पर ट्राउस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। हम आपको रोज सुबह गोल्ड की मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेट कराते हैं। जैसे पिछले साल आज ही के दिन अबाउट $3,300 गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे थे और इस साल के बिगनिंग में अबाउट $5,600 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा था। डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है इस करेक्शन के साथ जब गोल्ड $4,080 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है। इससे पहले गोल्ड और वापस एग्रेसिवली अपवर्ड ट्रेंड ले, राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड बार्स में 1 ounce, 10 ounce, 100 grams और किलो बार पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
1: गोल्ड का हाल चाल पता किया हमने अभी के अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रिसिला के साथ। मुझे फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पर भी, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची, फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पर भी, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां ली पंग होगी।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and Mirchi Mornings पर अगले 60 seconds होने वाले हैं updates from around the world. सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रपोज्ड रशिया सैंक्शंस बिल का स्कोप एक्सपैंड करते हुए ईरान को भी इंक्लूड किया जा सकता है. अगर ऐसा लेजिस्लेशन पास होता है तो रशियन ऑयल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर हाई टैरिफ्स लगाने का ऑप्शन मिल सकता है. ये प्रपोजल अभी लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा है, इसीलिए आगे क्या होता है उस पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है. नंबर टू पर यूएई ने एक नया टूरिज्म इनिशिएटिव लॉन्च किया है जहां रेजिडेंट अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दुबई विजिट करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं और उसके बाद अगर वो ट्रिप प्लान करते हैं तो रेजिडेंट्स को डाइनिंग डील्स, होटल पर्क्स और रिवॉर्ड्स पैकेजेस मिल सकते हैं. कुछ केसेस में 3,000 दिरहम्स तक के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं. एंड फाइनली नंबर थ्री पर क्रिकेट से इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल फिर से बन गए हैं आईसीसी के वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई बैटर. उन्होंने न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल को रैंकिंग्स में पीछे छोड़ दिया है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. राइट नाउ टाइम फॉर सम मिर्ची दैट बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: ओह नो,
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: Tera kya hoga, Kalya?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: मैं हूँ प्रिसिला एंड वेलकम टू राशि जोन का पहला पार्ट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज किसी को समझाने पे टाइम वेस्ट हो सकता है. हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता है. अपनी एनर्जी को बचाओ और अपने काम को कॉन्फिडेंटली करते रहो. लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एक दोस्त या फैमिली मेंबर थोड़ा सा रियलिटी से बचने की कोशिश कर सकता है. उनका सपोर्ट सिस्टम बनो. कभी कभी एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ही बेस्ट गिफ्ट होती है. लकी कलर फॉर यू इज डार्क ग्रीन. लकी नंबर इज 24. जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, ऑप्शंस कम लग रहे हैं. गुड. जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तब फोकस शार्प होता है. आज प्रोक्रास्टिनेशन को गुड बाय बोल दो. लकी कलर तुम्हारा है लाइलैक. लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, वीकेंड से पहले अपनी टॉप प्रायोरिटी क्लियर कर लो. डायरेक्शन तो तुम्हें मिल चुकी है, बस फर्स्ट स्टेप लेना बाकी है. और हाँ, ओवरथिंकिंग से बिल्कुल भी कैलोरीज बर्न नहीं होती है. लकी कलर फॉर यू इज रस्ट कलर. लकी नंबर इज 11. लियो यानी कि सिंह राशि, बॉस मोड ऑन कर लो. बस थोड़ी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और लोग सीक्रेटली उसी का वेट कर रहे हैं. बस रोर क्लासी होना चाहिए, स्कैरी नहीं. लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 31. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, स्केड्यूल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन पैनिक मोड में मत आ जाना. कल तक पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगा. डीप ब्रेथ्स लो और स्टूपिड लोगों को म्यूट मोड पर डाल दो. लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो. लकी नंबर इज 8. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 1. अभी ऑफ एयर मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. That's 9033647244. Abhi music bajega loud only on Mirchi Morning. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशि जोन का पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, स्वीट होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा भी स्ट्रीट नहीं होना चाहिए कि तुम अपना स्ट्रिक्ट वर्जन भूल जाओ। देखो, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो, ये हमेशा सेल्फ केयर का प्रतीत होती है, यानी कि एविडेंट होती है। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अगर लाइफ थोड़ी सी ऑफ बैलेंस लग रही है ना, तो टेंशन नको, थिंग्स नेचुरली सेटल होने वाली है। पेशेंस भी एक सुपर पावर होता है और तुम्हें वही दिखाना है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 29। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ऑफिस हो, बिजनेस हो या फिर लाइफ हो, स्पॉटलाइट तुम्हारी तरफ आ सकती है, बस वही कॉन्फिडेंस लेकर जाओ जो तुम सेल्फी लेते वक्त दिखाते हो। लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड कलर एंड लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पुराने तरीके को थैंक यू बोलो और नए चैप्टर को खोलो, हेलो बोलो उसको, चेंज को रेजिस्ट मत करो, उसके साथ डांस करो। लकी कलर फॉर यू इज स्लेट ग्रे, लकी नंबर इज 20। Aquarius यानी कुंभ राशि, हर चीज कॉम्पिटिशन नहीं होती बेटा, आज थोड़ा सा चिल मोड में रहो, लोग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे ही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो काइंडनेस हमेशा जीत ही जाएगी। लकी कलर फॉर यू इज aqua blue, लकी नंबर इज 9। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Pisces यानी कि मीन राशि, पिछले कुछ हफ्तों में काफी कुछ हुआ है, अब पॉज लेने की बारी है, थोड़ी सी सांस लो और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को याद करो, रिलैक्स मोड पर आ जाओ, तुम पाथ से हटे नहीं हो बल्कि थोड़ा सा स्लो हो गए हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लकी कलर फॉर यू इज मिंट कलर एंड लकी नंबर इज 36। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट टू। याद रखो कि ये स्टार्स जो है तुम्हें सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे ही हाथ में है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और इसी के साथ हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप टाइम। मेरा नाम है प्रिसिला और जाने से पहले एक प्राउड इंडियन मोमेंट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चल रहा है एंड यहाँ पर इंडिया के पैरा स्प्रिंटर दिलीप गवित ने मेंस 100 मीटर T47 इवेंट में गेम्स रिकॉर्ड 10.71 सेकंड्स के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है। और स्टोरी सिर्फ मेडल की नहीं है बल्कि हिम्मत की भी है। महाराष्ट्र के नासिक से आने वाले दिलीप ने बचपन में एक एक्सीडेंट में अपना राइट आर्म खो दिया था। एक वक्त था जब वो पैरा इवेंट्स में कम्पीट ही नहीं करना चाहते थे। आज वही एथलीट जो है कॉमनवेल्थ चैंपियन बन चुके हैं। अब इसे कहते हैं नेवर से नेवर एटीट्यूड। और आइसिंग ऑन द केक पता क्या है, मोहम्मद बासिल ने इसी इवेंट में सिल्वर जीता है, इंडिया का हिस्टोरिक गोल्ड सिल्वर फिनिश। वाह भाई, स्प्रिंट भी देजी स्टाइल में हुई, एकदम 1 and 2 फिनिश। साथ ही मुरली श्री शंकर ने मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, स्प्रिंट भी देजी स्टाइल में हुई, एकदम 1 and 2 फिनिश। साथ ही मुरली श्री शंकर ने मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और मनप्रीत कौर जो वुमेन्स

साथ। तब तक के लिए इंस्टाग्राम और एक्स से काम चलाओ, मुझसे वहां पर गप्पे शप्पे लड़ाओ। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: बचपन में ना जहां कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना। हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was डबल रोल। ट्विंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमको, हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विंस भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विंस का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस. सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहके काम मत चलाओ. गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन. ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉन स्टॉप ओपन डांस फ्लो.
7: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती. फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी. टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 732-997-2409.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज दरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी। दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। बट यू नो इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है, और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 फिल्म्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, फिर उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग करी है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सब के दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छा ये बताओ, एक और एक क्या होते हैं? अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11, और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मिड डे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता। मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वॉज डूइंग दिस फिल्म विद द फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी, एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे। कि कभी कभी सलमान खान

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का। बोलो गोपी, टेल टेल। वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
9: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
8: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
10: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Meethi Supari.
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर-पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना, लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ. गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन. ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉन स्टॉप ओपन डांस फ्लो.
3: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती. फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी. टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 7329972409.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है।

ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वही ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: आज मैं नहीं बोलूंगी, आज कोई और बोलेगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में इतनी खूबसूरती से सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बातें की, वही कॉन्वर्सेशन आज हम सुनेंगे, तो शुरू करते हैं।
1: जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही है वो, मैं हमेशा बोलता हूँ। जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है, मैं मोहम्मद रफी बाबा को मानता हूँ। उनको मैंने वैसे ही प्यार किया, और इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरे म्यूजिक को सुना है वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और खास तौर से रफी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में, जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं पहले से ही, हमारे माता और पिता ने हमको रफी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई ये कोई फरिश्ता है, ना केवल गाने के बारे में लेकिन एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना, जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तो मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी खास पर्पस से आए थे।
0: ऐसी ही और बातें थोड़ी देर के बाद, राइट हियर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: अब हो।
1: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ, पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
1: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ, पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: सोनू निगम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद रफी साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक अलग तरह का संगीत है, क्योंकि एक चेला जब अपने गुरु के बारे में बात करता है तो वो संगीत ही सुनाई देता है। एक इवेंट में दिल खोल के ऐसे खूबसूरती से सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बात की, वही बातचीत हम सुन रहे हैं, तो सुनते हैं।
1: एक बहुत बड़ा फर्क जो रफी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं, हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोग के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो ये जो किया ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए। गजल गा रहे हैं तो गजल का ठहराव आना चाहिए। तो ये बंदे अलग ही थे, ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे, द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था।
0: हाउ ब्यूटिफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।
1: दीवाना

0: sets 1:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनियन मिर्ची.
2: ये चांद सा रोशन

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची का।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।

0: एक बहुत ही खूबसूरत गाने में मोहम्मद रफी साहब की गायकी को कैसे एक्सप्लेन किया सोनू निगम ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में उन्होंने ये शेयर किया था, सुनिए।
1: उनका गाना है।

0: कैसे किसी को याद सताती है, या तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे। तू तो ना आए, तेरी याद सताए। इसके थर्ड अंदर में एक लाइन आती है, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है बहुत।
1: भाई गाना तो सुंदर है ही, जिस तरह से सोनू निगम ने एक्सप्लेन किया ये और सुंदर लग रहा है सोच के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: निकलता रहूं।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: Inefficient,
8: very complex,
9: clumsy or
10: confusion ही confusion.
11: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
15: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
7: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
8: Mohammad Rafi ke gaane aur unki baatein charo ke saath. Purani jeans par.

0: इवेंट में सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बहुत खूबसूरत बातें की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके गाने डिस्क्राइब किए, वही बातें आज हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी और सुनते हैं।
1: ये गाना है इनका, ये गाना LP का फर्स्ट गाना था, इन्होंने गाया था। और ये लक्ष्मी ने प्यार लाल के गाने को जब उन्होंने गाया तो उन्होंने जो पैसे दिए, उन्होंने वो पैसे लिए और उसको वापस दे दिए और बोला आधे तुम रख लो और आधे तुम रख लो, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल। वो गाना था तेरे प्यार ने।

0: नाज नाज को दिखाना है, तुझे नाज हो तेरे प्यार में।
1: वेल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का एक और खूबसूरत कॉम्पोजिशन संग बाय मोहम्मद रफी राइट हियर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची
1: मेहरबान।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज कैसे हर एक्टर पे सूट कर जाती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए इस बात को एक इवेंट में सोनू निगम ने कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया था।
1: अब यही बंदा गा रहा है हम काले हाई

0: अंदाज ना लगता है कि महमूदी घर। और यह मिगर सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबरा। ये कैसा सिंगर है कि ये आदमी की आवाज दिलीप कुमार भी शूट कर रही है, जॉनी वॉकर भी शूट कर रही है, महमूद भी शूट कर रही है, और मतलब और ऋषि कपूर भी शूट कर रही है।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। यही बात है पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: एक इवेंट में सोनू निगम ने रफी साहब के बारे में क्या कमाल की बातें की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही बातें आज हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी और सुनते हैं।
1: बहुत कमाल की मैं बताता हूँ। देखो सिंगर का क्या होता है, कंपोजर को बाईपास करना पड़ता है। ये तो सुनिए आपको, अभी गाना है,
2: वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये सैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा
1: है ना। तो ये एस जी वर्मा साहब की आवाज ये है। तो सिखाया कैसे होंगे गाने,
2: तेरे मेरे सपने अब एक रंग है ओ जहां भी ले जाए राहे संग है।
1: तो उसको गर्भ समय कैसे गाया,

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: सोनू निगम को मोहम्मद रफी साहब के बारे में बातें करते हुए सुनना अपने आप में एक संगीत है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में उन्होंने रफी साहब के बारे में बहुत सारी बातें की, वही बातें हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी और सुनते हैं।
1: मैंने शुरुआत में अपने करियर की, क्योंकि हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में तो और कोई जरिया नहीं था उस समय, तो शोज सिर्फ ऐसे होते थे, शादियों के शोज या बर्थडे के शोज ऐसे। तो मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे शोज कर रखे हैं। मैं बड़ा हैरान होता कि अगर दुल्हन आ रही है, बहारों फूल बरसाओ, किसी के बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, देशभक्ति का है, लाइन लगे पड़े रफी साहब के, मतलब कोई भी है ना, कुछ भी हो रफी साहब के ही गाने बजते थे। शराबी अगर लोग डांस कर रहे हैं तो मुझे दुनिया वालो शराब छलकाए जाम, तो शराबी बड़े खुश हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, आइए। तो रफी साहब के गाने ही होते थे हर मौके पे, हर अवसर पे वो जो गाने चुने जाते थे।
0: बहुत ही सुंदर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: mera.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
9: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है.
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मोहम्मद रफी की बातें और उनके गाने मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन ये बातें हम सोनू निगम की कही हुई सुन रहे हैं जो एक इवेंट में उन्होंने शेयर की थी। सुनिए।
1: नॉर्मली क्या होता है कि कोई गाने को जितना इनसिक्योर आदमी गाता है ना, वो ज्यादा हरकत दिखाता है, और जिसको अपने काम पे सिक्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है, वो हरकत लेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे ले भी लिया, ये कब हुआ। तो ये गाना है हुई।

0: सवाला, हरकत ये होती है सवाला गया।
1: तो ऐसी ही सुंदर हरकतों वाला एक और गाना सुन लेते हैं रफी साहब का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिम।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: This golden hour is brought to you by Tanishq. Suneheri hogi drive. Jab Tanishq gold jewelry se suneheri hogi har vibe. This drive time is brought to you by Tanishq jewelry. Har drive banegi yaadgar.
8: Listener mein back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

की टाइम। दोस्तों थ्रोबैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और थ्रोबैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी सी एक रील मोमेंट में मिलते हैं। कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है रील। ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Advocate Atul se baat kara dijiye sir.
2: Bol raha hu, mat kaun?
3: Atul ji. असल में मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ। समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी। मैं
2: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
3: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ। मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था।
2: ठीक है, काम में
3: वकील साहब, मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है।
2: अच्छा,
3: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है।
2: मेरे चैम्बर में आइए, तो हम जरा बैठ के बात कर सकते हैं आपसे।
3: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ, मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है हमेशा। मैं वही बता रहा हूँ, देखिए, चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडरवियर तक हो, वही धोखे देती है। थकिया धोखे, इतना धोखे देती है यार। वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने।
2: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने?
3: मजाक की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है, बेवकूफ
2: बात है।
4: सर बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं। अतुल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, अपने नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दें, आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में।
3: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया।
4: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
12: From the finest kitchens in India, a 1000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीज़ों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीज़ें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और ओल्ड गोल्ड अबाव 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शन। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टेट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDH। और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: Radio Mirchi, it's hot.

0: Sunsets 4:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों और माइक के इस पार मैं हूं आपकी वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि। और आज का जो शो है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज के शो में एक ऐसी आवाज का जादू बिखेरने वाली हूं जो यार आंखों में आंसू भी लाती है और चेहरे पे मुस्कान भी। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सोनू निगम की, क्योंकि आज है सोनू निगम का जन्मदिन। और यार वैसे तो उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने ना हमारे इमोशंस को सुरों में उतार दिया। मतलब सोचिए 4000 से भी ज्यादा गाने, वो भी 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में, नेशनल अवार्ड, मल्टीपल फिल्म फेयर्स। बट स्टैट सिर्फ नंबर्स है, असली जादू ना उनकी आवाज में है। तो चलिए आज की शाम मनाते हैं सोनू निगम का जन्मदिन और सेलिब्रेट करते हैं ये दिन उनकी आइकॉनिक हिट्स के साथ, हर एक मूड के साथ, हर एक कहानी के साथ। तो आप मुझे बताइए विच इज योर फेवरेट सोनू निगम सॉन्ग। टेल मी ऑनेस्ट एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सोनू निगम का ये अगला गाना right here on Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क. सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी कुछ गाने हैं ना, उनके लिरिक्स की वजह से याद रह जाते, कभी कभी उनके कंपोजिशन की वजह से, कभी कभी उनके सिंगर्स या पिक्चराइजेशन की वजह से। लेकिन एक ऐसा स्पेशल गाना है जो उसके सिंगर के एक हटके अंदाज की वजह से याद रहा। जी हाँ, बात हो रही है परदेस मूवी के गाने की, ये दिल दीवाना, संग बाय नन अदर देन बर्थडे बॉय सोनू निगम। और इस गाने में एक वेस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक है जो स्पेशली इंस्पायर्ड है माइकल जैक्सन से। जी हाँ, जब सोनू निगम इस गाने में गाते हैं ना, ये दिल दीवाना आह, तो ये जो आह है वो उन्होंने स्पेशली, ये जो सिग्नेचर स्टाइल है वो उन्होंने स्पेशली सीखी थी माइकल जैक्सन से। अब तब सोनू निगम माइकल जैक्सन के बहुत ही बड़े फैन थे और उनके गाने हर बार सुना करते थे। उनके गानों के लिरिक्स उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आते थे, लेकिन उनके गानों की स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। स्पेशली ये जो अंदाज है आह बोलने का, वो तो सोनू निगम को बहुत ही पसंद था। तो वो चाहते थे कि खुद के किसी गाने में वो ये स्टाइल यूज़ करे, और उन्हें मौका मिला जब नदीम श्रवण म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उन्हें ये दिल दीवाना गाने का मौका दिया। क्योंकि इस गाने में भी एक वेस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक था, तो सोनू निगम ने कोशिश की कि जो सिग्नेचर टच है आह कहने की, वो इस गाने में वो अपने अंदाज में डाल पाए, और उन्होंने बहुत ही खूब तरीके से डाला। क्योंकि ऐसा कोई इंसान हो नहीं सकता कि जिन्होंने ये गाना सुना है और सोनू निगम का आह कॉपी करने की या मिमिक करने की कोशिश नहीं की है। तो जी हाँ, ये जो आह भरा गाना है वो आपके लिए मैं अभी बजाने वाली हूँ। लेकिन सोनू निगम का सिर्फ इतना ही स्टाइल हटके नहीं था, और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें उनकी एक हटके सिग्नेचर स्टाइल है। अगर आपको वो पता है तो मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा एट @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते हैं बर्थडे बॉय सोनू निगम का ये गाना फ्रॉम द मूवी परदेस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और फ्रेंडशिप्स डे आने वाला है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्ती की साउंडट्रैक कौन सी है तो शायद हर किसी का जवाब अलग होगा। किसी के लिए वो हॉस्टल की गिटार वाली शाम है, किसी के लिए एक अंताक्षरी रोड ट्रिप, और किसी के लिए वो दोस्त जो हर गाने को सिर्फ दो लाइन जानता है लेकिन सबसे जोर से वही गाता है। और इसी दोस्ती म्यूजिक और यादों को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही खास इवेंट आ रहा है, दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट प्रेजेंटेड by Cultivate Talents Unlimited, ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा, जो कि यार यहाँ पर न्यू जर्सी में धमाकेदार इवेंट्स लेके आए हैं विद देयर भजन क्लबिंग सेशंस, एंड नाउ दे आर बैक विद दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट। और इस इवेंट के बारे में सबसे अच्छे से हमें और कौन बता सकता है एक्सेप्ट द स्टार ज्योत्सना शर्मा जी। तो चलिए उन्हीं को बुलाते हैं आज के शो पे। नमस्ते ज्योत्सना जी एंड वेलकम टू टुडे शाम शानदार।
1: नमस्ते सिद्धि, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी अगेन एंड वेरी वेरी बिग हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मिर्ची।
0: सो ज्योत्सना जी, एक्चुअली सारे जो लिसनर्स है रेडियो मिर्ची के वो आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव हैड, इस साल में आपने दो भजन क्लबिंग के बहुत ही धमाकेदार सीजन्स लाए हैं फॉर न्यू जर्सी फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द एंटायर यूएसए। और आपके इवेंट्स का जो एक अलग ही क्लास और एक प्रोफेशनलिज्म, एक अलग ही ग्रेस होता है, एक अलग ही वाइब होती है, वो हमारे सारे लिसनर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सो अमेजिंग इवेंट्स टू न्यू जर्सी।
1: कि हमको कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है, अपने टैलेंट जो हमारी कम्युनिटी में इतना अच्छा है उसको हम एक बड़ा स्टेज दे पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य की बात है। वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू। यस, पीपल हैव लव्ड अवर परफॉर्मेंसेस एंड यस इन दैट एक्सटेंशन, क्योंकि एक तो हो गया भजन और भक्ति और दूसरी शक्ति होती है दोस्ती, तो बस उसी को हमने सोचा कि इस बार सेलिब्रेट किया जाए कुछ खास तरीके से, और आज हम उस पर बात करने वाले हैं आपके साथ।
0: बिल्कुल, तो पहले तो नाम ही इतना खास है, और जैसे कि आपने कहा बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्ती। दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट आ रहा है न्यू जर्सी में दोस्तों, फ्राइडे ऑगस्ट 7th को 7 PM ऑनवर्ड्स एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस। तो दोस्तों ये जो इतनी खूबसूरत सी शाम है, पहले तो मैं ज्योत्सना जी से पूछना चाहूंगी कि देखिए लोग कॉन्सर्ट्स देखते हैं, आपके भी जो भजन क्लबिंग कॉन्सर्ट लोगों ने देखे हैं, कैरियोके नाइट्स अटेंड करते हैं, लेकिन ये एक जैमिंग नाइट है, मतलब बाकी जो म्यूजिकल इवेंट्स है उससे ये किस तरह से अलग है?
1: तो बहुत ज्यादा अलग है। दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट नाम रखा है। वी आर सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे, वी आर सेलिब्रेटिंग द फ्रेंडशिप वाइब्स। तो यहाँ जो हमारे सॉन्ग सिलेक्शन है, जो हमारे परफॉर्मेंसेज हैं, सबसे पहले तो सारा का सारा परफॉर्मेंस जो है ये लाइव बैंड पे होने वाला है। वी हैव अ वेरी बिग एंसेंबल ऑफ आर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इसके साथ में हमारे लाइव सिंगर्स, प्रोफेशनल बॉलीवुड लाइव सिंगर्स हैं जो परफॉर्म करेंगे। ऐसे ऐसे कुछ कुछ नुआंसेज होंगे जहां पब्लिक साथ में, जो हमारे ऑडियंस है, झूमेंगे हमारे साथ। और दूसरा तो दिल, दोस्ती और धड़कन और म्यूजिक सब चलेगा साथ में। तो इस तरह से गानों का सिलेक्शन किया गया है, जहां पुराने टाइम के गाने जो दोस्ती के वो भी होंगे, कुछ पुराने टाइम की रोमांटिक वाइब्स भी होंगी, तो भी नए टाइम की भी होंगी। हमारे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, संगीत निशारद हैं मोस्ट ऑफ देम, एंड बहुत यूनिक मेमोरेबल इवनिंग लेकर के लोग जाएंगे जब हमारे साथ। और हाँ, बीच में एक चीज और है कि हमारी शेर व शायरी हमारी बीच में रहेगी इसमें।
0: क्या बात है,
1: शेर व शायरी कविता बीच में चलती रहेगी। तो ये सब है साथ में, बढ़िया भोजन डिनर है, बढ़िया 3-course लैविश डिनर मिलेगा, ये है हमारी वाइब्स।
0: तो देखिए दोस्तों, फ्रेंडशिप्स डे के आसपास ये इवेंट हो रहा है, दिल, दोस्ती, लाइव म्यूजिक, शायरी, डांस, डिनर, सब कुछ है। लेकिन अब ज्योत्सना जी एक और चीज भी बता दीजिए कि टिकट्स किस तरह के हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं वो टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सो टिकट्स जो है बेसिकली दे आर अवेलेबल ऑन sulekha.com एज वेल, एंड इन एडिशन टू दिस दे आर अवेलेबल, यू कैन पे बाय Zelle टू आर फोन नंबर्स, आई विल शेयर दैट एज वेल। बट बिफोर दैट देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ टिकट्स। वन इज जनरल विच इंक्लूड्स द 3-course डिनर, अनदर वन इज अ प्रीमियम विच इंक्लूड्स 3-course डिनर विद ड्रिंक्स, दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस, and the VIP is including the VIP seating with 3-course dinner and alcoholic beverages. So, बहुत ही reasonable ticketing है, $65 में general tickets है हमारी, and $75 की जो tickets है, that is with dinner and drinks, and the VIPs are $100 each with the VIP seating, dinner and drinks. So, आपको सब कुछ total entertainment मिल रहा है, एक live band, live musicians है, live singers है, जो एक खास रात आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और आप झूमेंगे। 7 PM ऑनवर्ड हमने इवेंट को रखा है, बहुत कुछ है, खास सेगमेंट और है इसमें जो मैं बताना चाहूंगी सिद्धि, हमारे फ्रेंड्स ऑफ कम्युनिटी के लिए। तो कुछ इसमें सेक्शन एक ऐसा भी रहेगा जिसमें जो हमारे दोस्त हमारे बीच में नहीं है उनको याद करने का आपको मौका मिलेगा, जो कुछ कम्युनिटी के आइकॉन्स हैं जो नहीं आज हमारे बीच में उनको भी वो सॉन्ग सेक्शन जो 10 मिनट्स का है वो डेडिकेशन वो हम देंगे स्पेशली टू कॉल आउट अवर कम्युनिटी लीडर्स एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, और जो लोग अभी भी हमारे साथ आज की तारीख में हमें मजबूत बनाते हैं हमारी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को, उनको भी हम कॉल आउट देने वाले हैं। कुछ थोड़े से अवार्ड्स रखे हैं जिनको हम कहेंगे फ्रेंडशिप आइकॉन अवार्ड्स। अगर आपको लगता है ऑडियंस को किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं जो कि वाकई में फ्रेंड्स ऑफ कम्युनिटी है, वी वुड लव टू ऑनर देम, दिस इज दैट प्लेटफॉर्म। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम काम करें वो सोशल मैसेजिंग के साथ हो, एक मीनिंगफुल ड्रिवन वर्क हो और जो लंबा चले, जो जीवंत रहे और हम लोगों की यादों में भी उसी तरीके से रहें।
0: बहुत ही खूबसूरत बात शेयर की आपने ज्योत्सना जी, और दिल दोस्ती के लिए इससे खूबसूरत शाम और हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्रेंडशिप डे को सिर्फ विश ही नहीं करना चाहते लेकिन म्यूजिक, शायरी, डांस, डिनर और यादों के साथ अगर सेलिब्रेट भी करना चाहते हो तो दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट को बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम sulekha.com या फिर eventsbrite.com या फिर आप ज्योत्सना जी कॉल कर लीजिए।
1: On 732-997-2409, I repeat 732-997-2409. You can also call on my another number which is 201-780-2442. बहुत सिंपल है, वी आर अवेलेबल, सुलेखा पे भी है, इवन ब्राइट पे भी टिकट्स हैं, यहाँ भी हैं, कुछ स्पेशल प्रमोशंस चल रहे हैं, ग्रुप डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। सुलेखा पे ऑलरेडी हमारा 2nd of August तक एक ग्रुप डिस्काउंट अवेलेबल है फ्लैट फीस पे, तो वो आप देख सकते हैं वहां पर भी। बट यस, जो आएगा मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, तो जो आपको लगता है कि जिसके साथ आपको सुरूर आएगा, आपके दिल की धड़कनें और धड़केंगी और आपको एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी बनानी है, क्योंकि हमने रखी है आपके लिए फोटो बूथ और उसके साथ में अपने ग्रुप्स की फोटोज अगर आप हमें देंगे तो वो चलेंगी हमारी स्क्रीन पर। आपको फोटोज हमें पहले भेजनी पड़ेंगी एंड वो लाइव इवेंट में स्क्रीन पे जब हमारे सिंगर्स परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो फोटोग्राफ्स पीछे बैकग्राउंड में चल रही होंगी आपके फ्रेंड्स के साथ में। और हाँ, अगर आप कोई स्पेशल कॉल आउट देना चाहते हैं अपने किसी फ्रेंड को जिनका बर्थडे आने वाला है या बर्थडे होगा उस दिन या उसके आसपास, तो वी विल विश देम अ हैप्पी बर्थडे एज वेल।
0: क्या बात है,
1: ये कुछ खास चीजें स्पेशली दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट पे हमने आपके लिए रखी है। मैं और मेरे हस्बैंड तरुण शर्मा, द को फाउंडर्स ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड, आर ईगरली वेटिंग टू वेलकम यू ऑल टू क्रिएट अ वेरी वेरी मेमोरेबल यू नो हिस्ट्री और से द मेमोरी विद अस, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एवर दोस्ती स्पेशल इवेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
0: तो देखिए दोस्तों, मौका भी है, दस्तूर भी है, अगर आपके दोस्त को स्पेशल फील करवाना है उसको लेके आइए। और इतना ही नहीं, मिर्ची लिसनर्स के लिए एक बहुत ही प्यारा कॉन्टेस्ट है। अगर आपके दोस्त के लिए आपने कोई शायरी लिखी है या इन जनरल आप शायरी लिखते हो तो अपनी शायरी हमें व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि वो सारी जो शायरी है, जो स्पेशल शायरियां है, वो इस इवेंट में बोली जाएंगी आपके नाम के हिसाब से, आपके वो दोस्त के लिए स्पेशली अगर कोई मैसेज है वो बोला जाएगा। तो अपनी स्पेशल शायरी हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9033647244 9033647244, या फिर आप जे इंस्टा भी कर सकते हो @rjmirchisiddhi SIDDHI। अपनी खास शायरी भेजिए, क्योंकि कुछ खास शायरी यहां पर जीतने वाली है इस खास इवेंट के स्पेशल टिकट्स। तो दोस्तों, दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट्स पहली बार आ रहा है न्यू जर्सी, brought to you by none other than Jyotsna Sharma and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited. बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, आज ही जाइए अपने टिकट्स बुक कीजिए और अपने दोस्त को ये खूबसूरत नजराना दीजिए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
3: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
3: नहीं, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
13: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम.
14: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और आजकल न्यूज खोलो ना तो हर जगह एक ही वाइब है, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन, मार्केट शिफ्ट. और नेचुरली जब इतना सब चेंज हो रहा हो तो नए होम बायर्स के माइंड में एक ही सवाल आता है कि क्या अभी सही टाइम है या वेट करना चाहिए. और ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं, राइट गाइडेंस मैटर करता है, क्योंकि हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज भी होती है, बस उसे सही तरीके से कोई समझाने वाला चाहिए. कोई ऐसा चाहिए जो ऐसे सिचुएशन में भी बोले कि यार डोंट फियर, वी आर हियर. तो चलिए उसी के लिए बुलाते हैं बीश को फ्रॉम लाइन मॉर्गेज. ओवर टू यू बीश.
15: जय सहरा मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज गिविंग यू मॉर्गेज रेट अपडेट्स ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम. प्लेजेंट डे एंड द यूएस मार्केट सर्ज एंड यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोस टू 1.5% इन द सेकंड क्वार्टर. नो चेंजेस इन द मॉर्गेज रेट्स. Mortgage rates rose to their highest level in a year amid the re-escalating conflict with Iran and investors' great worries. I'm more worried about the Federal Reserve's plans to tame inflation. Mortgage rates likely to go higher from here. That's what they say. I've always said, do not fear land mortgages here. We offer the most competitive mortgage rates in the industry. So friends buying your dream home, call us today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.375%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Many homeowners refinance because they want to get out of an adjustable rate mortgage. Friends, please call Lion Mortgage to explore the options to refinance and save money on interest and closing cost. Debt consolidation is another goal of refinancing. If you have both a first mortgage and a home equity mortgage, combining the two mortgages into a one fixed lower mortgage rate is also recommended. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: Listener mein, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
13: It's 5:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
14: Sham Sharda. Let's do not donkey have a funky time.
15: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हम मना रहे हैं सोनू निगम का जन्मदिन. जी हां दोस्तों, आज है सोनू निगम का जन्मदिन एंड इतने सारे गाने जो सोनू निगम ने गाए हैं, या चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो दिल को छू जाने वाला गाना हो, चाहे वो शादी वाला गाना हो, यार हर एक गाना आइकॉनिक ही रहा है. लेकिन आज जो मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसमें से एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है फ्रॉम अमय पाटिल, जो कि रहते हैं एडिसन में, और इन्होंने कहा है, इन्होंने मुझे याद दिलाया है कि सोनू निगम का वो पहला गाना जिसके वजह से हम उनके आवाज़ के दीवाने हो गए थे, दरअसल वो गाना कोई बॉलीवुड मूवी का नहीं है, वो है फ्रॉम द एल्बम दीवाना. जी हाँ, द पेपी द रोमांटिक, सोनू निगम का पहला सोलो पॉप एल्बम का चार्ट बस्टर एंड व्हाट अ डेब्यू इट वाज. क्योंकि ये गाने ने ना सोनू निगम को घर घर का नाम बना दिया था, इंडिपेंडेंट म्यूजिक के गोल्डन एरा का हीरो बना दिया था. तो चलिए 90s का पॉप नॉस्टैल्जिया मैक्सिमाइज करते हैं विद दिस Song of Sonu Nigam, Deewana Tera, from the album Deewana, Amay Patil ki request par, right here on Mirchi. Lekin dosto, aap bhi Sonu Nigam ki favorite song ki request mujhse kar sakte ho. DM me on Insta RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI. Aur tab tak ke liye, birthday boy Sonu Nigam ka Deewana Tera, right here on Mirchi. It's hot.
16: Deewana.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Sirf happy friendship day kehke kaam mat chalao. Get ready for the ultimate friendship day celebration. Jyot Sinha and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited present Dosti Special Jamming Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shayari or non-stop open dance floor.
4: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

जब शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री पावरफुल लगती है ना, तो बैकग्राउंड में आवाज सोनू निगम की होती है। श्याम शारदा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हम मना रहे हैं बॉलीवुड म्यूजिक के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जन्मदिन। जी हाँ, सोनू निगम का जन्मदिन। और यार, इतने सारे रोमांटिक सॉन्ग सोनू निगम ने गाए हैं स्पेशली शाहरुख खान के लिए कि बस उनकी गिनती करते करते हम थक सकते हैं। लेकिन आज जो एक गाना रिक्वेस्टेड है, पराग पटेल ने रिक्वेस्ट किया ये गाना, जो कि सूरज हुआ मध्यम कभी खुशी कभी गम मूवी का गाना है यार, जिसके लिए ना पहले तो करण जौहर चाहते थे कि ये एक गाना जो कि डेजर्ट में शूट हुआ है एकदम वार्म हग की तरह लगे। और इसीलिए कंपोजर संदेश शंदिल्या ने सजेस्ट किया कि इस गाने के लिए सोनू निगम को ही लिया जाना चाहिए। एंड द रेस्ट इज बॉलीवुड लव सॉन्ग हिस्ट्री, वो तो आपको पता ही है। तो जी हाँ, हर बार जब शाहरुख खान लव सॉन्ग गाते थे ना, तब जो आवाज़ सुनाई देती थी वो सोनू निगम की होती थी। इतनी ज़्यादा उनकी आवाज़ कंबाइन हो चुकी थी कि बस शाहरुख के गानों में दरअसल हम ना बैकग्राउंड में सोनू निगम को ही महसूस करते थे। तो ये जादू था उनकी आवाज़ का, ये जादू है आज भी उनकी आवाज़ का बॉलीवुड म्यूजिक में। तो चलिए आज बजाते हैं सोनू निगम का सूरज हुआ मध्यम, पराग पटेल की रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, आपकी भी रिक्वेस्ट जल्दी से सेंड कीजिए RJ मिर्ची सिद्धि पर, SIDDHI ऑन इंस्टाग्राम। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। जब वादियों में बर्फ का एहसास होता है ना, तब ये गाना सबको याद आता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हम मना रहे हैं सोनू निगम का जन्मदिन। जी हाँ, बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सिंगर हमारे फेवरेट सोनू निगम का आज जन्मदिन है और आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे मिल ही रहे हैं और उसमें से एक बहुत ही खास सॉन्ग रिक्वेस्ट है फ्रॉम प्रीति सरबुद्धे जो कि रहती है एडिसन में। वो कहती है कि उन्हें साथिया फ्रॉम द मूवी साथिया जो टाइटल ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार वैसे तो वो गाना हमेशा अपने साथिया के लिए गाती ही है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फ गिरती है, न्यू जर्सी में जो बर्फ गिरती है, तब हर बार वो ये गाना जरूर सुनती है, क्योंकि इस गाने में एक लाइन है, बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे। तो यार बस ये लाइन उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल फील कराती है, बहुत ही अमेजिंग फील कराती है, स्पेशली जब न्यू जर्सी में बर्फ गिरती है। तो अगर आपको भी ऐसा ही कुछ फील होता है तो आपके लिए भी आज प्ले होने वाला है साथिया बाय सोनू निगम। वैसे एक बहुत ही खास बात है इस गाने की, इस गाने को AR रहमान ने ओरिजिनली कंपोज किया था इसके ओरिजिनल तमिल फिल्म के लिए, बट जब इसका हिंदी वर्जन बनाया गया तब इन्होंने पर्सनली सोनू निगम को कॉल किया, क्योंकि यार उनको इस गाने की कंपोजिशन को रीवर्क करना था स्लाइटली टू सूट हिज टेक्सचर। और देखिए वो गाना इस तरह से इतनी खूबसूरती से गाया गया कि आज भी गूज़बम्स आते हैं। तो चलिए सुनते हैं बर्थडे बॉय सोनू निगम का साथिया का टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची प्रीति की रिक्वेस्ट पर। और दोस्तों आपके भी रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहिए, सेंड मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए साथिया राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: se permite.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La viva la murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है
3: भैया? किससे बात?
2: अबे किससे बात करनी है
3: भैया? नंबर चेक करके,
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
3: पागल
2: पागल,
3: पता नहीं कौन बोल रहा
2: है, पता नहीं कौन बोल रहा है।
4: इको आ रहा है, इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, जैन साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ
3: भैया। नंबर चेक,
2: नंबर चेक के मिला।
3: हेलो
2: हेलो
3: भैया, क्यों परेशान कर रहा,
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
3: पागल
2: कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि है।
4: रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी।
3: कुकड़ू को
4: भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
15: Tera kya hoga, Kalya?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.

मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत्सना एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लो।
7: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 732-997-2409।
9: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: At 6:30 p.m., Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। आज है जुलाई 30th की शाम और हम मना रहे हैं बॉलीवुड के म्यूजिक किंग सोनू निगम का जन्मदिन। और आपके बहुत सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट सोनू निगम के आए हैं, लेकिन दोस्तों आज की जो शाम है वो अधूरी पड़ने वाली है अगर सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यार इतने सारे कमाल के गाने हैं सोनू निगम के। लेकिन एक जो बहुत ही खास गाना है और ये गाना रिक्वेस्ट किया है विद्या ने फ्रॉम एडिसन। और विद्या कहती है कि जब वो भूल भुलैया देखने गई थी, भूल भुलैया रीसेंट भूल भुलैया 3 वो देखने गई थी थिएटर में, तब वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट ऑफ दैट मूवी वॉज सोनू निगम की आवाज़ सुनना फॉर द सॉन्ग आमी जे तो मार। तो जी हाँ, ऐसा सबके साथ हुआ है कि क्लाइमैक्स और जो भी था मूवी का, उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि यार सोनू निगम की आवाज़ में आमी जे तो मार का वर्जन हमें सुनने मिला था। तो वही आज रिक्वेस्ट किया है विद्या ने फ्रॉम एडिसन। तो आज प्ले करते हैं आमी जे तो मार सोनू निगम्स वर्जन, लेकिन आपके जो भी रिक्वेस्ट है वो भी इसके आगे मैं प्ले करने वाली हूँ। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

जब दर्द का एक गाना बजता है और उसकी आवाज सोनू निगम की होती है ना, तब यार दिल ही नहीं रूह छू जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हम मना रहे हैं सोनू निगम का जन्मदिन। और आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट में से एक बहुत ही खास गाना है अभी मुझ में कहीं, फ्रॉम द मूवी अग्निपथ, जिसे रिक्वेस्ट किया गया है सुनील जी ने फ्रॉम एडिसन। और वैसे तो यार ये गाना सुनते ही ना दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि हाय क्या आवाज है, क्योंकि जब अग्निपथ रिलीज हुई थी 2012 में तो ऋतिक रोशन के पावरफुल परफॉर्मेंस को सोनू की सोल टचिंग वॉइस ने ना एक अलग ही लेवल पे ले जाकर खड़ा कर दिया था। और मजे की बात तो ये है कि डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने तब कहा था जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ था, दिस इज नॉट जस्ट अ सॉन्ग एंड इट्स एन इमोशन। और हम सब एग्री करते हैं क्योंकि ये गाना सुनने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि गूज बम्स ना आए। तो अगर आपको भी ऐसा ही फील होता है तो आपके लिए स्पेशली ये गाना बजा रही हूँ अभी मुझ में कहीं फ्रॉम अग्निपथ एज रिक्वेस्टेड बाय सुनील जी फ्रॉम एडिसन और सोनू निगम के जन्मदिन पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। गुलजार साहब के लिरिक्स, मदन मोहन जी के मेलोडीज और सोनू निगम की आवाज, यानी प्योर मैजिक। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हम मना रहे हैं सोनू निगम का जन्मदिन। जी हां, बॉलीवुड के म्यूजिक किंग सोनू निगम, जिनके इतने सुंदर सुंदर गाने, इतने मेलोडीज गाने हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस में हैं कि एक शाम काफ़ी नहीं है उनके सारे गाने सुनने के लिए। लेकिन आज का जो ये गाना है, जो रिक्वेस्टेड है, श्वेता जी ने रिक्वेस्ट किया है फ्रॉम पिस्कैटवे, और वो कहती है कि दो पल ये गाना वीर ज़ारा का बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही मेलोडियस गाना है, जिसे लिखा गया है गुलजार साहब ने, और इतना पोएटिक और इतना इमोशनल गाना है कि श्वेता जी कहती है कि जब भी वो ये गाना सुनती है तब लिटरली ऐसा लगता है कि दो पल के लिए ना दुनिया थम गई हो। तो जी हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है। वैसे ये सॉन्ग ओल्ड मदन मोहन कॉम्पोजिशन से रिक्रिएट किया गया है और सोनू निगम ने इसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली गाया है, ही ब्रॉट इट अलाइव। तो जी हाँ, हार्ट ब्रेक का क्लासिक कंपेनियन दो पल फ्रॉम वीर ज़ारा, श्वेता जी की रिक्वेस्ट पर आज बजाते हैं सोनू निगम के जन्मदिन पर। वैसे दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सोनू निगम सॉन्ग ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और चलिए इस शाम को थोड़ा रंगीन बनाते हैं, थोड़ा इमोशनल बनाते हैं विद दो पल फ्रॉम वीर ज़ारा फॉर बर्थडे बॉय सोनू निगम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacabana. Rambala. Burga, burga. La virtual la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Advocate Atul se baat kara dijiye sir.
2: Bol raha mat kaun?
3: Atul ye. असल में मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ। समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी। मैं
2: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
3: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ। मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था।
2: ठीक है, काम में
3: वकील साहब, मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है।
2: अच्छा,
3: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है।
2: मेरे चैम्बर में आइए तो हम जरा बैठ के बात कर सकते हैं आपसे।
3: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ। मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है, हमेशा
2: धोखे देती है।
3: मैं वही बता रहा हूँ, देखिए, चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडरवियर तक हो, वो ही धोखे देती है। थकिया धोखे, इतना धोखे देती है यार। वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने।
2: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने?
3: दोस्त,
2: ये फालतू मजाक क्या कर रहे हैं?
3: मजाक की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है, बेवकूफ
2: नहीं।
4: सर बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं। अतुल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, उन्हें नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दें, आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में।
3: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया।
4: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
15: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
15: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
16: They

कुछ संदेशों ने ना आंखों में आंसू ला दिए थे। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज हम मना रहे हैं बॉलीवुड के म्यूजिक किंग का जन्मदिन। जी हाँ, सोनू निगम का जन्मदिन। और वैसे तो आपके बहुत सारे संदेश आए, आपके बहुत सारे डीएम्स आए सोनू निगम के सॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही खास गाना है 1997 के बॉर्डर मूवी का, संदेश से आते हैं। और जब सोनू ने गाया था ना यार संदेश से आते हैं, तो एक पूरी जनरेशन ने ना रोना सीख लिया था। सोनू सिर्फ 24 साल के थे और रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम ने ये गाना लाइव गाया था इन फ्रंट ऑफ एन आर्मी कैंप बिफोर रिकॉर्डिंग, जस्ट टू फील सोल्जर्स इमोशंस। और इसके जो लिरिक्स थे वो इतने ज़्यादा टचिंग थे कि पूरा का पूरा स्टूडियो जब ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनकी आंखें भर आई थी। तो जी हाँ, देशभक्ति के बहुत सारे गाने बने हैं, लेकिन ये गाना जो सोनू निगम ने गाया है वो आज भी दिल के उतने ही करीब है। और आज इस गाने की रिक्वेस्ट आई है चिराग आलूवालिया से फ्रॉम पिस्कैटवे। चिराग कहते हैं कि हर बार जब ये गाना सुनते हैं ना, ऐसा हुआ ही नहीं है कि आंखों से आंसू ना आए। तो जी हाँ, आज बजाते हैं चिराग के लिए संदेश से आते हैं फ्रॉम द मूवी बॉर्डर सोनू निगम के जन्मदिन पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hoy.
5: Confusion hi confusion.
2: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: Oh no!
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
13: Listener MA, back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: at 7:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो या पहली दिवाली विद फैमिली के हो या कोई ऐसे फंक्शन की जहां सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेन्स वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDH। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा गाना जो सिर्फ गाना ना हो बल्कि जिंदगी जीने का तरीका हो। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए वक्त हो चुका है इस शाम में आपसे अलविदा लेने का। लेकिन इस शाम की बहुत ही खास बात थी, आज था सोनू निगम का जन्मदिन और ये पूरी शाम उन्हीं के गानों के लिए डेडिकेटेड थी। और सच कहूँ ना तो यार, एक शाम बहुत ही कम है सोनू निगम के गाने सुनने के लिए, एक दिन भी बहुत कम है, क्योंकि एक पूरा एरा है सोनू निगम की आवाज़ के लिए डेडिकेटेड, क्योंकि इतने सुंदर गाने, इतने अमेजिंग गाने उन्होंने गाए हैं। तो चलिए इस खास गाने के साथ आज की शाम में मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यार सोनू निगम की आवाज़ हम सबको सुनने मिली और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है इतने ऑलमोस्ट 3 decades तक उनके गाने। एंड देर इज़ नो मोर प्लेजर देन लिसनिंग टू सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सोनू निगम, आप जहाँ रहे खुश रहे, हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, क्योंकि आपने जो संगीत गाकर, आपने जो गाने गाकर हमारे दिल को सुकून दिया है, दैट इज़ प्राइसलेस एंड आई से दिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सोनू निगम फैंस। तो चलिए आज की शाम ये आखिरी गाना सोनू निगम का, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।